सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत

1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल

0: हिमाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। श्री गुरु नानक देव ने कहा है, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है वंदना। सर्वप्रथम नमन अपनी मातृभूमि को, जिसका सुंदर परिवेश हमारे जीवन को पोषित करता है, जिसकी संस्कृति हमारी धरोहर है और इसके जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा महती कर्तव्य है।

प्रकाश तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्तिपूर्ण रचना। ब्रह्मांड की अनेक घटनाएं प्रकृति के अजूबे उस सार्वभौमिक शक्ति के होने का आभास कराती हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उनके मनमोहक स्वरूप भक्तों के मन मंदिर में सदा ही विराजमान रहते हैं।

विदुषी मीराबाई रचित ये भजन अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में। श्रोताओं, ईश भक्ति में सबसे बड़ी बाधा होता है हमारा चंचल मन। इसे नियंत्रित कर शांत और स्थिर अवस्था में लाना एक सिद्धि की तरह है। स्थिर मन से की गई प्रार्थना से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।

श्री अरबिंदो के शिष्यों की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में। प्रभु का नित्य ध्यान हमें जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति देता है। मूंदे नयनों में भी हम उनकी मोहक छवि के दर्शन करते हैं और ये सुंदर रूप हमारे सारे दुख भुला देता है।

गोस्वामी तुलसीदास रचित ये राम भजन अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। हमारे देश में अनेक संत महात्मा विदुषी विभूतियां हो चुकी हैं, जिनकी ईश भक्ति सदियों से एक आदर्श के रूप में जनमानस के बीच व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास आदि, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई ने सामाजिक बाधाओं को पार कर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम का मार्ग दिखाया।

0: राजेश जौहरी की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्रीमती शोभा सिंह का है, वाचक स्वर माधवी येंडे का।
1: मनुष्य की प्रकृति अनेक विशेषताओं से भरी पड़ी है। देवत्व और पशुता दोनों ही उसके अंदर समाहित होते हैं। क्योंकि मनुष्य का विकास पशु से देवता की ओर होता है, इसलिए मन पशुता वाले व्यवहार की ओर अधिक झुकता है और बारंबार उसके इर्द गिर्द मंडराने में अधिक रुचि दर्शाता है। इस निकृष्ट क्षेत्र से उत्कृष्ट क्षेत्र की ओर मन को रूपांतरित करना बड़ा कठिन है। निरंतर प्रयास और अभ्यास के द्वारा इन विचारों में रुचि रखने वाला व्यक्ति उच्च विचारों के चिंतन में रम जाता है। ये सब अचानक नहीं होता, सघन अभ्यास और धैर्य के साथ ही संभव है। मन बहुत ही सूक्ष्म होता है।

0: इसे साधना से ही जीता जा सकता है। मन की दशा को निम्नतर स्तर से उच्च स्तरीय कक्षाओं में मोड़ा जा सकता है। श्रेष्ठ दिशा में, श्रेष्ठ चिंतन में मन को लगाने के लिए आवश्यक है कि अति श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति की जाए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो उत्कृष्ट और प्रेरणाप्रद साहित्य का स्वाध्याय करना ही चाहिए। महापुरुषों की जीवनी और उनसे जुड़ी गाथाओं को पढ़ना चाहिए। जब भी खाली समय मिले इसे पढ़ें और पढ़े हुए विषय का चिंतन मनन करें। इस तरह अभ्यास करने से मन इन विषयों में रुचि लेने लगता है। धैर्यपूर्वक और निरंतर अभ्यास से मन को श्रेष्ठ दिशा मिलती है। इससे जीवन की दिशा तो बदलती है, साथ ही कर्म परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जीवन में आए इस बदलाव को व्यक्ति तो महसूस करता ही है, आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तब उनकी गिनती श्रेष्ठ और सुधी जनों में होने लगती है। जीवन में मन की एकाग्रता और स्थिर बुद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर आदमी की बुद्धि चंचल हो जाए, सड़क पर उसका ध्यान न रहे, तो दुर्घटना तो होगी ही। इसलिए सबसे पहले मन की चंचलता को समाप्त कर स्थिरता प्रदान करनी चाहिए। एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात दुनिया तो बहुरंगी है, इच्छाएं अनंत है। कर्म और ज्ञान के भी अनेक रूप, अनेक रंग हैं। कभी हम सोचते हैं हमारे लिए सत्कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, कभी सोचते हैं पूजा के अतिरिक्त कुछ नहीं, कभी सोचते हैं स्वाध्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं। एक मार्ग पर चलने से वो सहा जाता है, उस मार्ग में निपुणता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति के लिए स्थिर मति होना अति आवश्यक है।
1: श्रोता सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामी की। आज का विषय है धान में कीट नियंत्रण।
1: किसान भैया रो, आज हम आपरों के लाने धान की फसल के कछु जिन प्रमुख कीट होते हैं जिनसे अपन को कुल को नुकसान हो जाते हैं उनके नियंत्रण के बारे में बतावो चाहत हैं, सलाह देवो चाहत हैं। तो एक गंगई कीट होत है। ई कीट के प्रौढ़ आकार में मच्छर के समान सफ़ेद रंग के होते हैं और गंगई मक्खी को आक्रमण जो देखो जाते है कि अगस्त से शुरू होते है और ई को जुन मैगट है माने इल्ली व अंडा से निकलवे के 6 से 12 घंटों के भीतर विकसित होख हों तना माने कंसा के भीतर पहुँच खे हानि पहुँचाऊ थे जिसे ग्रसत तना के कक्ष को और पत्रक को गोल पोंगली माने जो अपन पोंगा कहते हैं ऊ में बदल जाते है। अब इके नियंत्रण की बात करी जाए तो भैया एक पोंगा प्रति वर्ग मीटर होवे पे फिप्रोनिल 0.3 g 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन प्रयोग कर सकते हैं। एक और तना छेदक कीट है। ई कीट की जो इल्ली है वह सफ़ेद पीले रंग की होत है। ई के नियंत्रण के लाने जो आर्थिक क्षति अपन को होत है तो अपन एक को नियंत्रण करें तो एक मौत प्रति वर्ग मीटर या फिर 5% डेड हार्ट होबे पे दानेदार कीटनाशकों में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फिप्रोनिल 0.3 g को प्रयोग अपन कर सकत हैं। और नहीं तो फिर छिड़काव के लाने जैसे कि कोनू रसायन खो अपन 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना खो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। करटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% 500 से 600 मिलीलीटर को उपयोग अपन कर सकते हैं। भूरा माहू को प्रौढ़ कीट हल्के से गहरे रंग को होत है। जो कीट की शिशु

प्रौढ़ दो ही अवस्थाओं में पौधों को हानि पहुंचाउत हैं और जे पानी भरे खेत में ऊपर दिखवे बारे फसल के भागों पे अपनी सुई आकृति के मुखांगों को चुभोक हैं पौधों को रस चूसत रहते हैं जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाते हैं और सूखा

0: बाली पकबे की अवस्था तक देखबे में आउत है। सो अगर अपन इको नियंत्रण न करे तो नुकसान होत है, इसे नियंत्रण बड़ो जरूरी है। तो कीटों की संख्या 15 से 20 कीट प्रति पौधा दिखाई देवे पे इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या फिर ब्यूप्रोजीन 25% 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाखो अपन छिड़काव करके नियंत्रित कर सकते हैं। कटुआ कीट सोई धान की फसल में लगत है, जो रात में नुकसान पहुंचाऊत हैं। ई कीट की इल्ली अवस्था जुन होत है बस शुरुआई से फसल को हानि पहुंचावे बारी होत है। सामान्य तौर पे जे इल्लियां पत्तियों को खात हैं और फसल की बालियां आवे पे उनको काट खो गिरा देते हैं, जिससे कबों कबों दाने बिखर जाते हैं। जी इल्लियां दिन में कंसों के बीच में या जमीन में छुप जाते हैं, बालियों पे जे समूह में आक्रमण करते हैं और इनको अपन फौजी कीट सोई कह सकते हैं। इन कीटों से आर्थिक हानि तो बहुत ज्यादा होते है भैया, सो उसे बचवे के लाने एक इल्ली प्रति पौधा होवे पे रासायनिक नियंत्रण के लाने फेनवल रेट चूर्ण 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को प्रयोग अपन कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में आज सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण, रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है और संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आज रात्रि 10 बजे से देर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे।

शाम 6:30 पर लोक संगीत में आज की कलाकार हैं गायत्री जैन, और सुगम संगीत में शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजेश खरे के गाए कुछ गीत।

शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हम प्रसारित करेंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय है गौ पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग और उसका उपचार। जानकारी देंगी डॉक्टर कविता रॉय।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरवगान की 150 की आज की कड़ी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा सुबह 10:20 पर।

सुबह 7:20 पर हम प्रसारित करेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: अस्माकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। करकटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृ तर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. President Draupadi Murmu has given assent to Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. It makes it an offence to internationally prevent its singing or to disturb an assembly engaged in singing it. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
4: India-China border affairs, which was held on 6th. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander-level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstandings and miscalculation along the line of actual control.
3: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and the eventual service as the 14th President of India. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. The World Bank has raised serious concerns over Pakistan government's decision to divert multi-billion rupee funds meant for flood-affected families in Balochistan towards infrastructure projects. The bank has warned that the move could deepen poverty and increase disaster risk for vulnerable households. According to the World Bank, 84% of eligible beneficiaries are classified as ultra-poor and vulnerable. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. Karan Singh and Sherjin Santhimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. India also won a bronze medal in the senior men's foil event, with Tejas Patil finishing on the podium in a field featuring several renowned international fencers. Indian women fencers put up another dominant performance in the senior women's EP event, winning three medals. Tanishka Khatri clinched the gold, while her compatriot Khushi Dabhade took the silver. Thousands of devotees across Keralam began offering Pitru Tarapanam in the early hours today on the auspicious occasion of Karikada Vavu. And that is the end of this news bulletin.
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। प्रदेश की खुशी दाभाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 13 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें मध्य प्रदेश के भैरव सिंह चौहान को वर्ष 2025 के लिए लोक संगीत की निर्गुणी परंपरा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद जाएंगे। वे गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश प्रस्तावों, उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सरकार के सहयोग पर चर्चा करेंगे। संवाद में विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सहित नए क्षेत्रों में निवेश पर भी चर्चा होगी। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप और निवेशक तथा उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। उन्होंने लोगों से सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और अपने परिवेश में हरियाली बढ़ाकर इस त्यौहार को प्रकृति का उत्सव बनाने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के राज्यस्तरीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेसवार्ता में बताया कि सरकार ने रानी दुर्गावती राज्यस्तरीय पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंती भाई राज्यस्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1,00,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी संवाददाताओं को जानकारी दी।
1: पहले जहाँ हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा की कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू, इंदौर अबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में शामिल है, भोपाल से सरजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है, और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता, ये भी प्रारंभ की गई।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने हेमू कलानी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री शुक्ल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और तिरंगा यात्राएं लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेंगी। इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में भी तिरंगा यात्रा, रैली और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नीमच में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर और राजेंद्र शुक्ल रीवा में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को भूमि के 4 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल की करोंद कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन और हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि सुरक्षित रखने की भी अपील की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है। उन्होंने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और खरगोन सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। प्रभावित जिलों में कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जबकि खरगोन में अपर वेदा बांध के गेट खोले गए हैं और कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और खंडवा जिले में पुलिसकर्मियों ने अब तेज बाढ़ के बीच में बहाव में फंसे एक दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला है।
3: बारिश का समय है, ऐसे समय में जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में जहां जहां अभी फंसे थे, रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है।
0: अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में झाबुआ की आकांक्षा अभियान के तहत 62 अधिकारियों द्वारा 146 शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 62.5% मिलने पर कलेक्टर ने उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा के ग्राम सरईमाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत बांझ निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 134 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कटनी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत में आयोजित कुकिंग कॉम्पिटिशन में 25 स्वसहायता समूहों ने भाग लिया। पन्ना जिले के सरकोहा गांव में पट्टा खदान में काम के दौरान मजदूरों को

16.96 कैरेट का अत्यंत दुर्लभ जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और इंदौर जिले के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राला मंडल में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर 150 आपदा मित्रों को आपातकालीन स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब किसानों को 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। और प्रदेश की खुशी धावाड़े ने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जलभराव, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। गुड मॉर्निंग जबलपुर।

साथियों, सुबह की ताजी हवा, खिले खिले पौधे, हाथ में चाय की प्याली और आपके रेडियो सेट पर बजते गीत, यानी सुबह के शीतल माहौल के साथ आपके दिन की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, सूर्यदेव तो बादलों की ओट में छिपे हुए हैं और श्रावण माह में हम भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ रिमझिम बौछारों का भी आनंद ले रहे हैं। बारिश समूची प्रकृति को हरा भरा कर देती है और ये मौसम होता है पौधों के लिए सबसे अनुकूल। और हम अपने घर के पौधों की नई नई कलम तैयार कर सकते हैं, जैसे तुलसी, सदा सुहागल, नाग चंपा, कनेर, चांदनी जैसे सरलता से लगने वाले पौधों का उपहार हम अपने प्रियजनों को दे सकते हैं और ये हमारे प्रकृति मित्र होने का सबसे अच्छा परिचायक हो सकता है। क्योंकि श्रोताओं, वास्तव में प्रकृति है तो हम हैं और तभी मिलेंगे हमें हरियाली भरे रास्ते।

हसरत जयपुरी की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में हम और चर्चाएं करेंगे इन संदेशों के बाद।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए।

0: अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सो योर प्लेस और माइन।
6: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
5: कॉन्डम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
5: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। दोस्तों, बारिश की फुहारें जहां एक ओर सुहानी लगती हैं, लेकिन जब अत्यधिक बारिश हो तो बाढ़ जैसी विकट स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। और प्राकृतिक आपदाएं तो कभी कहकर नहीं आती, इनसे हमारा सामना अचानक ही होता है। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या अन्य आपदाएं जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर देती हैं, लेकिन आजकल मौसम विभाग के अनुमान के आधार पर इनसे बचाव की पूर्व तैयारी, सतर्कता और सही जानकारी हम रख सकते हैं। श्रोताओं, इस समय प्रशासन की चेतावनियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और जहां जल भराव की स्थिति हो या संभावना हो, हमें वो स्थान तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप अपने ज़रूरी दस्तावेज, प्राथमिक चिकित्सा का सामान, पीने का पानी हमेशा अपने पास रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। घनघोर बारिश में ही पहाड़ी स्थानों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग या पेड़ गिरने जैसी आपदाएं आती हैं, अतः ऐसे स्थलों पर हम भ्रमण के लिए ना जाएं तो ही हमारी इसमें समझदारी होगी। और दोस्तों, हरे भरे माहौल में पिकनिक जाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहां वाटरफॉल हो, चट्टाने हो, फिसलन हो, अचानक वहां पानी का बहाव भी बढ़ सकता है, इसलिए पानी वाले पिकनिक स्पॉट पर बारिश के दिनों में कतई ना जाएं, या अगर जाते हैं तो इन स्थानों का दूर से ही दर्शन करें। श्रोताओं, आपदा के समय में धैर्य और सतर्कता से काम लें, सुरक्षित स्थान पर रहें और एक दूसरे की मदद करके हम इस कठिन समय से बाहर आ सकते हैं।

0: आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम अनुरोध। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है भारतीय दूर संचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में टैरिफ और बिलिंग विनियमन। तो प्रस्तुत है विषय विशेषज्ञ संजय कुमार गुप्ता से नीलाभ वाजपेयी की बातचीत।
1: श्रोताओं, समय समय पर हम अपनी भेंटवार्ताओं के माध्यम से आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं, और ऐसे ही एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है भारतीय दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में टैरिफ और बिलिंग विनियमन। और इसके लिए आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में सलाहकार संजय गुप्ता जी को। संजय गुप्ता जी, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी आकाशवाणी जबलपुर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: गुप्ता जी, हम अपनी बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
2: जी, ट्राई जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, वह एक केंद्रीय नियामक का कार्य के रूप में कार्य करती है, और यह दूरसंचार एवं ब्रॉडकास्टिंग जो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, जो सर्विस सेक्टर हैं, उनमें नियामक जो प्राधिकरण है, जो नियमन का है बेसिकली, उसका जॉब इसको असाइन किया गया है। तो बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा कि आपको ज्ञात हो कि जब 1991 के आसपास जब भारतीय जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जब उसका एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब एक तरीके से ओपन हुआ मार्केट जो है, तो उसी समय में दूरसंचार क्षेत्र में भी जो है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर जो है, वो प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हुई। तो और 94-95 के आसपास जो है, प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी दूरसंचार सेवा प्रदान करना शुरू करी। तो चूंकि इस क्षेत्र में गवर्नमेंट खुद भी एक सर्विस प्रोवाइडर थी, और साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को यह फील हुआ कि इस सेक्टर में भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की आवश्यकता है, और उसी तारतम्य में जो है, गवर्नमेंट ने 1997 में एक एक्ट के तहत, जिसको कि ट्राई एक्ट 1997 के नाम से जाना जाता है, 20 फरवरी 1997 को पार्लियामेंट में यह एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत ट्राई की स्थापना हुई। तो शुरू में जब ट्राई की स्थापना हुई, तो बेसिकली ट्राई को जो है, दूरसंचार क्षेत्र में जो है, टैरिफ निर्धारण, डिफरेंट जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट होते हैं, उनको नियमित करने के लिए, और इसके साथ साथ शुरू में जो है, इनको ट्राई

0: को जुडिशियल पावर भी दिया गया। जुडिशियल पावर ऐसे कि मान लीजिए अगर दो टेलीकॉम या मोर देन टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है,
1: जी
0: या अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और किसी कंज्यूमर ग्रुप के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो ट्राई उसका जो है लीगली रिजोल्यूशन भी दे सकती थी, ऐसा उसको पावर दिया गया था।
1: जी
0: लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर बाद में विथ फ्रॉम द डिफरेंट फीडबैक फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ने सन 2000 में जो ट्राई की जो जुडिशियल पावर थे वो उससे अलग करते हुए उन्होंने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का निर्माण किया, जिसको TD सेट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से फिर आगे जो है 2004 में टेलीकॉम क्षेत्र के अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर भी है उसके उस क्षेत्र का भी विनियमन का कार्य जो है वो गवर्नमेंट ने ट्राई को दिया है। और तब
1: जी
0: से लेके अब तक ट्राई जो है इन दोनों सेक्टर्स में डिफरेंट पॉलिसीज का निर्धारण, कंसल्टेशन बनाना, रेगुलेशन बनाना, डिफरेंट ऑर्डर्स निकालना, और भारत सरकार को दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में कैसे आगे प्रगति की जा सकती है उसके बारे में रिकमेंडेशन देने का मुख्य कार्य है।
1: जी देखा जाए तो ट्राई की जो स्थापना है उसको करीब 29 साल हो गए हैं, तो ऐसे में ट्राई की क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं?
0: जी, जब हम देखें अगर 97 में जैसे स्थापना हुई थी तो हमारे पूरे इस टेलीकॉम सेक्टर में कुछ करोड़ ही उपभोक्ता होते थे। अभी हम जब अगस्त 2026 में बैठे हैं तो हमारे भारतवर्ष में ही जो है टेलीकॉम क्षेत्र में लगभग 130 करोड़ के आसपास उपभोक्ता हैं। तो इसे हम एक तरीके से हम एक उपलब्धि ही कह सकते हैं एक पूरे भारतवर्ष के लिए, कि जिसमें हम कुछ करोड़ से शुरू होकर के आज हम 130 करोड़ के आसपास, और जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेली डेंसिटी है, मतलब टेली डेंसिटी का मतलब ये होता है कि प्रति 100 व्यक्तियों के बीच में कितने लोगों के पास टेलीकॉम की सुविधा उपलब्ध है। तो ये आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में ये जो फिगर है ये लगभग 85% के आसपास लोगों के पास ये सुविधा है।
1: गुप्ता जी, जैसा कि कहा जाता है कि आज का दौर जो है वो डिजिटल युग का है, तो ऐसे में डिजिटल क्रांति होने के बावजूद अभी भी बहुत से लोगों के पास टेलीफोन सुविधा नहीं है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं?
0: जी, जैसा मैंने पिछले वाले उसमें आपको बताया कि जो हमारी टेली डेंसिटी है पूरे भारतवर्ष में वो लगभग 85-86% के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा गैप ये है कि अर्बन क्षेत्र में तो हमारी जो टेली डेंसिटी है
1: जी
0: वो 100% से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी वो करीब 57-58% के आसपास है।
1: जी
0: तो इसके पीछे जो मुख्य कारण हैं, जो जैसा कि आपने पूछा,
1: जी
0: तो इसके मुख्य कारण जो ये हैं, एक तो क्या है कि कुछ एरियाज अभी भी रूरल क्षेत्र में ऐसे हैं जो जहाँ पे अभी टेलीकॉम फैसिलिटीज़ अभी पहुँचनी बाकी हैं।
1: जी
0: कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टेलीकॉम फैसिलिटीज़ पहुँच चुकी हैं लेकिन वहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। और तीसरा ये है कि टेलीकॉम फैसिलिटी भी पहुँच चुकी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन जो हैंडसेट वगैरह की जो कॉस्ट है वो
1: जी
0: उतनी अफोर्डेबल नहीं है। तो इसकी वजह से उन एरिया में अभी टेली डेंसिटी कम है और ये बढ़ने का है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसमें भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सभी जो एरियाज हैं उसके ऊपर कार्य जारी है। भारत सरकार ने जो है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट होता है, एक डिजिटल भारत निधि के नाम से एक प्रोजेक्ट होता है,
1: जी
0: उसके अंतर्गत डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इन रूरल और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं
1: जी
0: वहाँ पे टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम के तहत उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया है, जिससे कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डिजिटल भारत निधि की स्कीम के तहत नए नए BTS लगाना और टेलीकॉम सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जो जैसे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत डिफरेंट हमारी जो कंपनीज हैं
1: जी
0: वो बहुत ही अफोर्डेबल दर के टेलीकॉम हैंडसेट भी अभी अब इंडिया में ही डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जिससे कि ये जो समस्याएं हैं कि हैंडसेट की कॉस्ट ज़्यादा होना और टेलीकॉम फैसिलिटीज ना उपलब्ध हो पाना, जिसकी वजह से हमारे कुछ क्षेत्र जहाँ पे टेली डेंसिटी कम है वो धीरे धीरे उसमें भी सुधार होगा और उसमें भी काफ़ी तरक्की होगी।
1: जी गुप्ता जी, अगर हम बात करें टैरिफ और बिलिंग से संबंधित विषय पर, तो ट्राई ने भारतीय दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में टैरिफ और बिलिंग विनियमन के लिए क्या कदम उठाए हैं?
0: जी, तो जहाँ तक टेलीकॉम टैरिफ के विनियमन का सवाल है, तो जब 1997 में ट्राई की स्थापना हुई, जब ट्राई इस्टेब्लिश हुआ,
1: जी
0: तो उसके कुछ वर्षों तक जो है ट्राई डायरेक्ट रूप से जो है टैरिफ का निर्धारण कर रही थी, मतलब कि कॉल की दरें क्या होनी चाहिए, एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में जब कॉल्स जाती हैं, तो जो उसको टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी में एक इंटरकनेक्ट वर्ड नाम दिया गया है,
1: जी
0: तो एक एक टीएसपी से दूसरे टीएसपी में जब

0: कॉल जाती हैं, तो उसका इंटरकनेक्ट की दरें क्या होनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ों का निर्धारण जो है ट्राई अपने स्तर में करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये फील्ड और ये सेक्टर जब इवॉल्व हुआ, जब ग्रो हुआ, तो अभी जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, तो अभी इसको फोरबियरेंस में डाल दिया गया। फोरबियरेंस मतलब मार्केट ड्रिवन इसको कर दिया गया है, और मार्केट ड्रिवन इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जैसे दूरसंचार क्षेत्र में ही देखा जाए, टेलीकॉम सेक्टर में देखा जाए,
1: जी
0: चार ऑपरेटर ऑलरेडी हैं, और ये मार्केट इतना मेच्योर हो गया है कि जो भी प्राइसिंग है वो इस तरीके से ग्रो कर रही है जिससे कि जो सर्विस प्रदाता हैं वो भी सर्वाइव कर सके और कस्टमर के लिए भी वो बहुत बर्डनफुल ना हो। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहूँगा
1: जी
0: कि इवन दो ट्राई ने टेलीकॉम का जो टैरिफ है वो फोर वेरियंस में डाला है, लेकिन जहाँ पे भी जिस भी चीज़ के बारे में अगर ट्राई को अगर ये फीडबैक मिलता है या कंप्लेंट आती हैं कि कुछ किसी प्रकार की नई सुविधाएं चाहिए या नए पैकेज आने चाहिए,
1: जी
0: तो ट्राई उसमें हस्तक्षेप करती है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को जो है नेसेसरी ऑर्डर्स या गाइडेंस देती है।
1: गुप्ता जी, आजकल बहुत से प्रमोशनल कॉल्स, SMS आते हैं या स्पैम कॉल्स भी आते हैं, तो ऐसे में ट्राई ने ऐसी कॉल करने वालों के लिए क्या सजा का प्रावधान किया है?
0: जी देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्पैम कॉल जो होते हैं, ये ट्राई का एक रेगुलेशन होता है, TCCPR रेगुलेशन 2018, उसके तहत इसको नियंत्रित किया जाता है,
1: जी
0: और इसी रेगुलेशन को 2024 में फिर से इसमें अपग्रेड करके इनको मॉडिफिकेशन किया गया है। और इसमें जो जहाँ तक आपने सजा का प्रावधान किया, लेकिन
1: जी
0: उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले DND हमारा एक एप्लीकेशन है, और इवन जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके भी आइदर थ्रू ऐप के थ्रू या इवन एक कॉल सुविधा है 1909 के तहत, कोई भी कस्टमर चाहे तो डिफरेंट सेक्टर्स के जो कॉल्स आते हैं वो चाहे तो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, वो
1: जी
0: चाहे तो एक दिन या समय भी निर्धारित कर सकते हैं कि उस दिन या समय के बीच में उस टाइप के उनको कॉल्स आए या SMS आए।
1: जी
0: लेकिन अगर किसी उपभोक्ता ने अगर उसको सभी प्रकार से ब्लॉक कर दिया है, उसके पास उसके बाद भी अगर आता है, तो उपभोक्ता जो है उसको हमारा जो ट्राई का जो DNDF है या जो कस्टमर जो TSPs के जो ऐप होते हैं उसमें उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: जी
0: फिर उसका 3 टीयर में उसका उसमें मतलब मॉनिटरिंग का प्रावधान है या सजा का प्रावधान है। पहली बार अगर कोई गलती करता है तो उसको वार्निंग दी जाती है,
1: जी
0: फिर से वो अगर गलती रिपीट करता है तो उसके रिसोर्सेज ब्लॉक किए जाते हैं। रिसोर्सेज मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कॉलर जो है वो वार्निंग देने के बाद भी अगर स्पैम कॉल कर रहा है, तो उसको जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं इन अ मंथ उसको सीमित कर दी जाती है कि वो इस महीने में इतने से ज्यादा कॉल या SMS नहीं कर पाएगा। और उस वार्निंग के बाद भी अगर वो अपनी गलतियों को दोहराता रहता है तो उसके रिसोर्सेस पूरे तरीके से ब्लॉक कर दी जाती हैं, मतलब कि ये उसके बाद वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से दूरसंचार की सुविधा नहीं ले
1: जी
0: पाएगा। तो ये 3 स्तर में एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड पूरा उसका प्रोसीजर है, उसके
1: जी
0: तहत कार्रवाई की जाती है।
1: जी गुप्ता जी, यदि कोई मोबाइल उपभोक्ता है और उसका मोबाइल चोरी हो गया है
0: जी
1: या गुम हो गया है,
0: जी
1: तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए?
0: जी इसमें मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई अपना हैंडसेट लेते हैं, जब हैंडसेट परचेज करते हैं, तो सबसे पहली सलाह तो ये है कि जेन्युइन जो सेलर्स हैं
1: जी
0: आप उन्हीं से लें। और जब भी आप लेते हैं तो देखिएगा, हर मोबाइल के हैंडसेट में उसका जो बॉक्स होता है उसमें IMEI करके एक नंबर होता है, दो आजकल दो वाले आते हैं तो दो दोनों नंबर रहते हैं, एक तो क्या है उसको नोट करके रखना चाहिए,
1: जी
0: और अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो एक कोड होता है *06# करके, उसको भी आप अगर डायल करोगे तो आपको IMEI दिखेगा, और उसको कहीं स्टोर कर लेना चाहिए, पहली पहली चीज़।
1: जी
0: दूसरी चीज़, अगर जब वो अगर कहीं आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो भारत सरकार का एक पोर्टल है या ऐप है संचार साथी करके,
1: जी
0: और उसमें CAIR का एक अलग एक सुविधा है जिसमें जा करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, और उस कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में प्रोविज़न ये रहता है कि वो जो IMEI नंबर जो है उसको उस ऐप के थ्रू टोटली ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने से ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी ने चोरी किया है या गुम हुआ है, तो वो ये है कि वो हैंडसेट जो है जब वो किसी उसमें कोई दूसरा सिम लगाएगा तो वो नेटवर्क में इनेबल नहीं होगा, उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ वो डिटेक्ट भी हो जाएगा कि वो कहाँ पर है, तो उसके बाद पुलिस जो भी लॉ के तहत जो MHA के लॉज हैं उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, या अगर जेन्युइनली मिस हुआ है तो वो उसको वापस भी मिल सकता है।
1: जी संजय कुमार गुप्ता जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने ट्राई के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं हमारे सुनने वाले इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता, जिसका विषय था भारतीय दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में टैरिफ और बिलिंग विनियमन। विषय विशेषज्ञ संजय कुमार गुप्ता और भेंटकर्ता नीला वाजपेयी।

काला बाजार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और लीजिए अब सुनिए तीन देवियां फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

तो श्रोताओं, हरे भरे सावन का आनंद लें, साथ ही आवश्यक सावधानियां भी रखें। कहीं पहुंचने की जल्दी में तेज गति से वाहन न चलाएं। नदी, जलप्रपात जैसे पानी बढ़ने के स्थानों पर पिकनिक ना मनाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अब आज के गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम से अनुमति दें अस्मिता को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को

0: फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में ये अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्री

0: यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जाँच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र

0: Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर. सुबह के 8:30 हुए हैं. लीजिए सुनिए फिल्म संगीत. सबसे पहले हमने चुना है आरती फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में. गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन.

धर्म करम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज़ में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में मेरे सनम फिल्म का ये नगमा। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में दो बदन फिल्म का ये गीत, शब्द रचना शकील बदायूं ने की, तर्ज बनाई रवि ने। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए मुकेश और साथियों का गाया उपहार फिल्म का ये गीत, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

ममता फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

श्रोताओ, फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाज में भूमिका फिल्म का ये गीत, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार वनराज भाटिया।

0: श्रोताओं, कुछ और फिल्मी गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे सुबह 9:30 पर। लीजिए सुनिए न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: श्री चौहान की अपील पर देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में सरकार ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपये करने को मंजूरी दी है। वहीं रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1,00,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी गई है। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जल भराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। और खेलों से भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक रसधार। लोक रसधार कार्यक्रम में आज के दो कलाकार हैं संगीता उपाध्याय।

और मलखानपुरी। पहले सुनिए संगीता उपाध्याय के गाए बुंदेली लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए बुंदेली लोकगीत। लोक रसधार में आज के दूसरे कलाकार हैं मलखानपुरी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मलखानपुरी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लोक रसधार कार्यक्रम। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। लीजिए सुनिए अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभिनेत्री फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अमित कुमार, लता मंगेशकर और पर्ल पद्मसी के मिले जुले स्वर में बातों बातों में फिल्म का ये गीत। शब्दकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम।

अभिमान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। शब्दकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन। और श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी की शब्द रचना लता मंगेशकर के स्वर में। संगीतकार हैं राहुल देव।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: सुर्खियों में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आगरमालवा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते मौसम में ठंडक आई है। वहीं जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं, क्लबों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों

0: के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, मैराथन, साइक्लोथॉन, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कल यानी 13 अगस्त को तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, जबकि जिला मुख्यालय पर 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने पिछले दिनों आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित आगरमालवा, सुसनेर और नलखेड़ा के 3 सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने सुसनेर में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। श्रावण माह के दौरान आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में महारुद्राभिषेक, पूजन, भजन कीर्तन और विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 19 शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में ग्राम तनोडिया में आयोजित शिविर में 253 आवेदन प्राप्त हुए। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और महिलाएं उपस्थित रहीं। अभियान के तहत जिले के नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर और आगरमालवा में जनपदवार क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 शिविर तथा शहरी क्षेत्रों में 1-1 शिविर लगाया जाएगा। वहीं तनोडिया में आयोजित जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले में पंजीकृत 280 युवाओं में से 113 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित किया गया। स्वरोजगार योजनाओं के तहत इस शिविर में 63 हितग्राहियों को 52,03,000 रुपये के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR इंदौर के वैज्ञानिकों और आगरमालवा कृषि विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले के ग्राम सोनचिड़ी, आगाखेड़ी, परसुखेड़ी और पालड़ा का भ्रमण किया। इस दौरान सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया गया और किसानों को वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड MPIDC द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित और प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई। उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552G के आगरमालवा जिले के ग्राम आमला से चमली तक के 2-लेन मार्ग को अब 4-लेन में बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्धपीठ माँ बगलामुखी देवलोक निर्माण के प्रस्तावित और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर स्वीकृत सभी कार्य को समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर जिला चिकित्सालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने महिलाओं को स्वच्छता और 4 माह तक अनिवार्य रूप से स्तनपान कराने के सही तरीके की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए SP कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर जनपद पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्रोत स्तर पर गीले, सूखे और सैनिटरी अपशिष्ट को अलग अलग रखने, घर घर कचरा संग्रहण, कम्पोस्टिंग, पुनर्चक्रण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए आगरमालवा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने जिले में प्रस्तावित होल्डिंग एरिया के लिए चिन्हित भूमि का बीते दिनों निरीक्षण किया। वहीं युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत आगरमालवा के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में विभिन्न जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विद्यार्थियों ने जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आगरमालवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी, आज की इस कड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

श्रोताओ, अपनी भारत माँ का सुरभित आंचल प्रत्येक प्राणी को पोषित करता है। उनके सुजल यानी जल से परिपूर्ण, सुफल यानी फल, धन धान्य से पूर्ण रूप को हम सभी देशवासी सदा ही नमन करते हैं। उनका गौरवशाली इतिहास, विविध संस्कृति परंपराएं हमारी धरोहर हैं। उनका प्रत्येक दैवीय स्वरूप वंदनीय है। वो माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी हैं, जो अपनी संतानों को सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं।

अपनी भारत माँ को हम नमन करते हैं। उनकी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना, उनके हरित आंचल को संरक्षित करना, उसके पुष्पित पर्यावरण की रक्षा करना, उसके निर्मल जल से पूर्ण नदियों को स्वच्छ रखना ही वास्तव में उन्हें नमन करने का एक सार्थक माध्यम है। आइए हम सभी गर्व से कहें, वंदे मातरम।

0: अभी आप सुन रहे थे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद आवामी एक्शन कमेटी का विश्व भर के कश्मीरियों से प्रदर्शन को वैश्विक बनाने का आह्वान। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित आवास निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग पर चिंता जताई। अमरीका ने $185 अरब की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया। उत्तर अमरीका ने अमरीका दक्षिण कोरिया के

0: सैन्य अभ्यास से पहले जापान की ओर मिसाइल दागी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शन अब वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरियों से कल रैलियां आयोजित कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और दमन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाने की अपील की है।
1: अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पीओजेके में दो महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र में लोगों को अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। समाचार से कृष्णकांत।
0: विश्व बैंक ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे अरबों रुपए के आवास कार्यक्रम से धन हटाकर उसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से गरीबी और बढ़ सकती है और कमजोर परिवारों के लिए आपदा का खतरा बढ़ सकता है। विश्व बैंक के अनुसार पात्र लाभार्थियों में से 84% अति गरीब और कमजोर वर्ग में आते हैं। इनमें से कई लोगों के पास सीमित बचत है, औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बेहद कम है और उनके पास उत्पादक संपत्ति भी न के बराबर है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग द्वारा हथियार दागने की यह दूसरी घटना है। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी बताया है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल दागी है। एक रिपोर्ट।
3: ये परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा अगले सप्ताह से बड़े पैमाने के अपने सालाना सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा के दो दिन बाद हुआ है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम के इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया से संभावित खतरों के खिलाफ सैन्य तैयारी को मजबूत करना है। उत्तर कोरिया इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता रहा है और इसे हमले की तैयारी बताता है। प्योंगयांग ने पहले भी ऐसे अभ्यासों का जवाब हथियारों के परीक्षण और कड़े बयानों से दिया है। पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया, अमरीका और जापान ने उत्तर कोरिया से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का पता लगाया था। बताया जा रहा है कि जून के आखिर के बाद से देश का ये पहला बैलिस्टिक हथियार परीक्षण था। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण की पुष्टि नहीं की है, हालांकि वो अक्सर अपने हथियार परीक्षणों के विवरण परीक्षण के एक दिन बाद जारी करता रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमरीका ने अपनी $185 अरब की

0: गोल्डन डोम प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के विकास में रक्षा कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, निवेशकों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। अमेरिका के लिए गोल्डन डोम के डायरेक्टर जनरल माइक ग्वेटलिन ने सालाना स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिंपोजियम में गोल्डन डोम फॉर अमेरिका इकोसिस्टम हब की घोषणा की है। अमेरिका के एक पूर्व मरीन रॉबर्ट गिलमैन को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें रूस ने 4 साल से अधिक समय तक कैद रखा था। गिलमैन की रिहाई की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, जो मानवीय आधार पर उन्हें रिहा करने के लिए सहमत हुए। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों ने भारत की ग्रांट सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 803 मिलियन नेपाली रुपए की कुल लागत वाले 8 विकास परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। कोलंबिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया में आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप से कई घर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशांत महासागर की ओर स्थित चोको क्षेत्र में भूकंप केंद्र के पास स्थित कई आदिवासी समुदाय अभी भी बिजली और बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं, जिससे बचाव और राहत कार्य और भी कठिन हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कहा है कि विश्व के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में ही रहते हैं, जो देश को हाथी की पारिस्थितिकी विरासत का एक जीवंत प्रतीक बनाता है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत पृथ्वी के सबसे समृद्ध और विविध भूदृश्यों में से एक का घर है। उन्होंने बताया कि देश के 14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्य हैं, जो महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा और उनके प्रवास मार्गों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जंगली एशियाई हाथी राजसी सुंदरता के प्रतीक हैं और इनका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। श्री सिंह ने हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र का अभियंता बताते हुए कहा कि वे घूमते हुए बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पौधों को उगने में मदद मिलती है और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। श्री सिंह ने नागरिकों से इन विशालकाय जीवों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद आवामी एक्शन कमेटी का विश्व भर के कश्मीरियों से प्रदर्शन को वैश्विक बनाने का आह्वान। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित आवास निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग पर चिंता जताई। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग। दिस
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 10:20 हुए हैं। हम हाजिर हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा के साथ। आप सभी श्रोताओं को अस्मिता का नमस्कार। पहले गीत में फरमाइशकर्ता हमारे आप सभी श्रोता गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद सरकटे, जरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज,

सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार नरवाड़े। आप सभी ने लिख भेजा है किशोर कुमार के गाए इस गीत के लिए। शब्द रचना इंदिवर की है, तर्ज बनाई कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

सारंगा कार्यक्रम में अगले फरमाइशकर्ता आप सभी श्रोता, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित, वैभव और मट्टू, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना मयंक और तन्वी गौहर, जयपाल यादव, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अब सभी सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी का, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव परमन।

सारंगा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में पत्थर की सनम फिल्म का ये गीत। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए हमें पत्र भेजे आप सभी श्रोताओं ने। वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश। सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी की। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, नूर महल।

महसोल सीतामढ़ी, बिहार से मुसर्रत जहाँ नाज, तलत जहाँ फरहत जहाँ रिफत, नुजहत जहाँ शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी, और कलेर बिहार से बेगम निकहत परवीन सदफ आरजू, सपना संगीता रोड इंदौर मध्य प्रदेश से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, साक्षी मनन सुनीता संगीता पिंकेश और तान्या। आप सभी ने सुनना चाहा है नसीब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है कालिया और इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। सेमिनरी हिल्स कृष्णानगर टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे रमाताई सीमाताई रीमाताई दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक श्रीमती रोशनी प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश श्रीमती प्रीति और नवनीत राय घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर कालिया फिल्म का ये गीत।

सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की कावर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली,

छत्तीसगढ़ दतरेंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष दिगंबर

सारंगा कार्यक्रम के आखिर में फरमाइश करता हमारे आप सभी श्रोता, सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ और शाइना शर्मा, जामरून महाराष्ट्र से दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और गणेश, आप सभी ने लिख भेजा है दाग फिल्म के इस गीत के लिए, जिसमें स्वर है किशोर कुमार का, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योग समूहों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। इस दौरान स्पेसटेक विजन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 25 से अधिक स्पेसटेक कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज की 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू समाज को रोजाना पूजा की अनुमति दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को हर शुक्रवार जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। और मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने।
3: तुझसे हम दूर रह नहीं सकते, कोई बेचैनी हमको मारती है, खेलती है मेरे दुखों के साथ, जिंदगी किस कदर शरारती है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर फोन करें गीत सुने। आज कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स हम रिकॉर्ड कर सकें और सुनेंगे उनकी कुछ बातें और उनके पसंद के नगमे। तो सिलसिला शुरू कर रहे हैं फोन कॉल्स का। ये है हमारा पहला फोन।
4: जी अच्छी हूँ मैम।
3: अंजुम जी, कैसा मौसम है मंदसौर में?
4: मंदसौर में बारिश हो रही है अभी तो।
3: अच्छा क्या कुछ बताएंगे आप मंदसौर के बारे में, कुछ बताएं?
4: जी
3: कुछ बताएं मंदसौर के बारे में।
4: मंदसौर में यहाँ पे मंदिर है, पशुपतिनाथ फेमस है, एक पास पे यहीं पे है और दूसरा नेपाल में है, मतलब।
3: अच्छा चलिए।
4: और गार्डन है घूमने के लिए।
3: ठीक है चलिए, अब ये बताइए फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
4: जी फिल्म का नाम है वक्त की आवाज। तू भी बेकरार मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार मैं भी बेकरार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करे गीत सुने।
0: जी।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार दूल्हे
1: दीदी, दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बापचिया, जिला आगर मालवा से। दीदी, यहाँ पे पानी बरस रहा था, कल दिन भर बरसा, और वहाँ भी बरस रहा होगा पानी तो आपके यहाँ भी।
0: हाँ, झमाझम बारिश हो रही है, पूरा मध्य प्रदेश जो है इस समय भीग रहा है ना। बहुत
1: नहीं दीदी,
0: खुशी की
1: बढ़िया
0: बात।
1: रहा पानी का, बहुत बढ़िया मौसम है, गिर
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ, बहुत दिनों की बाद ये पानी जो बरसा है वो हमें काफ़ी राहत दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये पानी बरसना, नहीं तो कैचमेंट एरिया में बहुत कम पानी था।
1: हाँ
0: दूल्हे सिंह
1: दीदी,
0: जी,
1: मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन और ये हरियाली अम्मास और सावन सोमवार की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीदी।
0: जी, आप एक चीज़ भूल रहे हैं, हमारा
1: हाँ दीदी,
0: स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है।
1: हाँ 15 अगस्त की भी दीदी आपको
0: जी,
1: शुभकामनाएं और ये।
0: बहुत बहुत बधाई हम सभी, इतने अच्छे मौसम में इतने अच्छे अच्छे पर्व आ रहे हैं हमारे लिए। और
1: हाँ
0: दूल्हे
1: दीदी,
0: सिंह जी, आज फोन किया है, आपके पसंद का गीत बता दें।
1: दीदी सत्यम शिवम सुंदर का सुंदरम है नहीं, वो सत्यम शिवम
0: हाँ
1: सुंदर,
0: जी,
1: उसका सुनवा दीजिए टाइटल सॉन्ग।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, किससे बातें कर रहे हैं हम?
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
1: जी
0: हम बहुत अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
1: हमारे भी मिजाज बहुत अच्छे हैं। और ये बताइए कि इस झमझमाती बारिश में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? पसंद का गीत बताएं।
0: जी जो सुना देना गोपी कैसा साथी ना खोल बरसात में।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते मैडम
1: किससे बात कर रहे हैं बताइए पहले।
0: जी, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ,
1: कहाँ से
0: कटनी से।
1: जी? बोलिए राम सिंह जी।
0: जी आप कैसी हैं?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं। आपका पसंद का गीत कौन सा है पहले तो वो बता दीजिए।
0: मूवी का नाम है प्यार किया तो डरना क्या, सॉन्ग है तुम पर हमें अटकारा।
1: धन्यवाद।

0: चाय बजे अंग्रेजी जो सोता था बस तेन बंडा बेले छे लक्ष्मण देखो चाय बारे बोला दीदी।
1: जी लक्ष्मण रेकवार जी कैसे हैं?
0: अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आपकी चाय की खुशबू हमें मिल रही है। क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज सुनवा दी एक पिक्चर है हाथी मेरे साथ,
1: हाँ
0: नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में फस रहना है।
2: नफरत

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते,
0: आपका शुभ नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम, पिंडरी जिला मंडला से।
0: कौन सा फरमाइशी नगमा है आपके लिए, आपकी
1: मेरे
0: पसंद
1: को
0: का?
1: सुना दीजिए मैडम, पग घुंघरू बांध मीरा नाचिए।
0: हाँ।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैडम।
0: जी, परिचय दीजिए आपका। कहाँ
1: हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, मुझे एक गाना सुनना है।
0: से बोल रहे हैं राजू जी?
1: बीना से। हाँ,
0: आपका गीत कौन सा है?
1: सावन को आने दो, इसमें एक गाना है, तो मैं गीतों में डालूंगा।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेगी सुने नीतिका
0: जी
1: वर्मा जी शायद।
0: जी
1: जी बिल्कुल, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले की मनकारी गांव।
0: तो आप ये बताइए कि पानी तो अच्छा झमाझम बरस रहे हैं, और ऐसे बरसते पानी में आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: जी जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि पानी रिमझे तो बिल्कुल है आपने कहा, लेकिन भोपाल साइड में बहुत अच्छा पानी गिर रहा है। हमारा बुंदेलखंड तो अभी बिल्कुल 2-3 दिन से बरसात नहीं हो रही है,
0: हाँ,
1: धूप निकली है।
0: और चलिए
1: जी
0: भगवान की कृपा सब पर बरसे और सब जगह झमाझम पानी बरसे, ताकि हमारा जो पानी का जो स्टॉक है वो तो पूरा हो जाए, हमारा बरस कैसे बीतेगा नहीं तो, है ना?
1: जी बिल्कुल नितिका जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग हमारे जो छत्ता बुंदेलखंड में जितने जिले हैं वो लगभग अभी सूखे हैं।
0: अच्छा जी, पानी तो
1: हाँ
0: काफी दिनों से नहीं गिर रहा था और यही बस 3 दिनों से बरस रहा है पानी।
1: अभी जब से पानी गिरा है, जब से पानी की शुरुआत भई है, पानी बरसने
0: जी
1: की, तब
0: जी
1: से लेके आज तक अभी हमारे खेतों से पानी नहीं निकला है बाहर,
0: ओहो,
1: इतना कम पानी है।
0: चलिए सही बात है, हम समझ सकते हैं इस समस्या को, क्योंकि हमारे किसान भाई काफी परेशान हो रहे हैं, है ना?
1: जी जी
0: तो
1: जी जी जी जी
0: इससे हमारी फसल भी मार खाएगी, और वाकई में चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय जल्दी दूर हो जाए, पानी जल्दी अच्छे से बरस जाए और सभी की फसल अच्छी लहलहाए, यही हम चाहेंगे।
1: जी जी
0: और चलिए लहलहाते खेत जब आपके भी हो जाएंगे और इस समय जो पानी बरस रहा है, तो ऐसे में आपको कौन सा गीत याद आ रहा है?
1: फिल्म का नाम है अमेरी गरीबी,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं कि ओ मेरी सासू मेरे साले, बीबी करो मेरी मेरे हवाले।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुलासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और हाँ? आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ।
1: जी जी, आपके पसंद का गीत फिर जल्दी से बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है उपकार, मेरी देश की धरती सोना।

0: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनोतिया जिला गुना से।
1: जी आपने फोन किया है, अपनी पसंद का गीत बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है हकीकत और इसमें कर चले फिदा जान तन साथी।

0: साथियों।
1: हेलो
2: हेलो।
1: जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार दीदी। हाँ नमस्कार दीदी, मैं ग्राम चताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका नियमित श्रोता प्रमोद कुमार शर्मा बात कर रहा था। दीदी, पहले जो आकाशवाणी पर किसान वाणी कार्यक्रम आता था,
1: जी जी
2: 1993 में लगाया था मैंने, 6 दिसंबर 1993 को।
1: जी
2: जब से दीदी आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था।
1: अच्छा
2: हाँ दीदी, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर चुका था, तो अभी नंबर लिया मैंने दोस्त से, तो उससे मैंने कहा, मैंने कहा आज मैं कॉल लगाऊंगा, तो आज पहली बार में ही कॉल लगा दीदी मेरा।
1: चलिए तो प्रमोद कुमार जी, पहले तो आप अपने मित्र को धन्यवाद कीजिएगा, और आपने फोन किया है तो आपकी पसंद का गीत हमें बता दीजिए।
2: आज दीदी आपके पास पिक्चर मिलेगी,
1: जी बताएं,
2: जान पिक्चर का गीत सुनना है दीदी,
1: बोल बताएं।
2: नैनों में महबूब के देखूंगी मैं डूब के। हाँ

0: नीमच जिले से मनासा तहसील के चपला गाँव से बोल रहा हूँ, मोहित साहू बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं मोहित साहू जी?
0: बस ठीक ठाक है, आनंद है
1: जी। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में फोन किया है, अपने पसंद का गीत बताएं।
0: मेरे अनाड़ी फिल्म का गाना सुनना है मेरे को, अनाड़ी फिल्म का फूलों सा चेहरा तेरा।

0: नमस्कार
1: रमेश मालविया, इंदिरा नगर चौराहे उज्जैन से।
0: जी। उज्जैन में अच्छा मौसम
1: बाबा
0: है
1: महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं हम।
0: जी। रमेश मालवीय जी, आज आपका फोन लगा है, अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: आज हमारी पसंद का गीत तो बस एक ही गीत है
0: जी
1: दिल और दिमाग में।
0: हाँ
1: फिल्म है याराना
0: जी।
1: और उसके बोले भोले।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को आज संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना जगाई और अलग अलग क्षेत्रों भाषाओं धर्मों के लोगों को एकजुट किया। इससे आज भी देश की पहचान को मजबूती मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, राजेंद्र शुक्ल रीवा और जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसरो के चेयरमैन डॉ विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री सिंह ने कहा कि डॉ साराभाई की सोच, वैज्ञानिक सोच ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव रखने में मदद की। हरियाली अमावस्या के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और उनके संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। उज्जैन में आज हरियाली अमावस्या पर दूध तलई क्षेत्र स्थित प्राचीन दूधेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन और श्रृंगार किया जाएगा। रात्रि 8 बजे महाआरती होगी। मंदिर के कुएं के जल को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। और नाइजीरिया में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत के करण सिंह, शेरजिंद, शांति मोल और तनिष्का खत्री ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपकी खिदमत में पेश है प्रोग्राम आपकी फरमाइश। पत्रों के माध्यम से आपके द्वारा भेजी गई फरमाइश का ये खास प्रोग्राम आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। सबसे पहले सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन आर डी वर्मन की है, और इस गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र हमें मिला है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार का। और साथ ही साथ ये खत हमारे पास है, ये हमारे श्रोता है अनिल, सबीहा, सुषमा, आरती, अमृता, तृप्ति, राखी, पूजा, मीनू और श्वेता का। आप सभी की फरमाइश पर हम आपके लिए भेज रहे हैं आपकी कसम फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तावा खान, आफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा का। और पटेल नगर मलोट पंजाब से ये पत्र है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजूरिया।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है मेरा साया फिल्म से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और साथ ही साथ ये पत्र हमारे हाथ में है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहदी अली खान का लिखा ये गीत, जिसका संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने मेरा साया फिल्म के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का वो गीत जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार की है। साथ ही साथ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र हमारे हाथ में जो है वो है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। और कंवर कॉलोनी बड़वाह से ये हमारे श्रोता है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये खूबसूरत सा नगमा आपके रेडियो सेट पर।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

अंतराल का समय पूरा हुआ, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी आज प्रसारित की जा रही है, इसकी दूसरी कड़ी।

छल प्रपंच और कपट से सनी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति में एक के बाद एक भारतीय अंचल, प्रदेश और राज्य पराभूत होते जा रहे थे। यहां वहां यूनियन जैक की पताका लहराने लगी थी।

0: स्थानीय शक्तियों के प्रतिरोध रहित समर्पण ने जनगण की दास्ता के दस्तावेज लिखना शुरू कर दिया था। जनता की तकलीफें दिन दूनी रात चौकनी हो रही थीं। व्यापक असंतोष और सीमा रहित असहायता।
1: विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध कर पा

0: बनाने में सक्षम राष्ट्रीय शक्तियों में से एक थे दक्षिण पश्चिम के मराठे, जो मुगलों की शहंशाही के दौर में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए पूरे भारत में उपस्थित हो चुके थे। इनकी अपनी रियासतें थीं, जिनके स्वामी सूबेदार पेशवा के प्रभुत्व से जुड़े हुए थे।
1: ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा और झांसी का तामझाम विस्तृत था, लेकिन जब पेशवाई संकट में आई तब इसका खोखलापन भी उजागर हुआ। इन सूबेदारों के अपने स्वार्थ और कूटनीतिक कुटिलताएं पेशवा की काल्पनिक सर्वोपरिता की रक्षा नहीं कर सकीं।
0: पेशवा का पद और पादशाही, नाना फडणवीस और बाजीराव प्रथम का संकल्प, दूरदृष्टि और चातुर्य अब विगत स्मृतियों का विषय मात्र रह गए थे।
2: मराठों का ताश का महल अंतिम मराठा युद्ध में बिखर गया। उनका प्रतीक पुरुष पेशवा अब अंग्रेजों का वेतन भोगी था। संधि में उसे मिली 8 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन कि वो अपने दरबारियों, अमले, सेवक चाकरों, दास दासियों, स्त्रियों और संतानों का खर्च उठा सके। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से विस्थापित कर गंगा किनारे बसे हुए बिठूर का जागीरदार बना दिया गया था। स्वाधीनता, स्वाभिमान और छत्रपति महाराज के स्वप्न का विराम या फिर समापन।

0: मोरू पंत
1: जी श्रीमन,
0: कितना भिन्न है बिठूर का यह परिवेश पूना से। कहां पूना की हर क्षण खोलती खदबदाती राजनीति, और यहां बिठूर में सर्वत्र एक ठहरी हुई शांति, निस्तब्ध प्रशांतता, सुनने को केवल गंगा की लहरों की कलकल और गूंजते हुए आरती के गीत। क्या ही अच्छा नहीं हुआ कि वो सब एक सपने की तरह पीछे छूट गया।
1: उचित ही सोच रहे हैं श्रीमंत,
0: लेकिन एक तंश तो हमें सदा ही सहलता रहेगा। काश हम इस होने को टाल पाते। पता नहीं इतिहास का निर्णय हमारे लिए क्या होगा, पर यह तो स्पष्ट ही है कि फिरंगियों ने हमें पराजित कर दिया, और हम ही क्या, लगता है समूचा देश इस पवंडर की लपेट में आ रहा है। कहीं कोई उम्मीद का आसरा नहीं, आंधी के तिनकों की तरह उड़ी जा रही है आस्थाएं। प्रभुता संपन्न पेशवाई भी एक ऐसा ही तिनका सिद्ध हुई है मोरू पंत।
1: हम प्रतिरोध में विफल रहे श्रीमंत, क्योंकि हमारी शक्तियां बिखरी हुई थी, हमारी दृष्टि सीमित और संकुचित थी।
0: गंगा की लहरों पर ठहरे हुए उस अस्ताचलगामी सूर्य को देखो मोरू पंत, जैसे एक सिंदूर रची नाव हो जो कालो दधि में बहती चली जा रही हो, अदृष्ट और अनिश्चय की दिशा में।
1: वाह, अच्छी काव्य कल्पना है पंत प्रधान।
0: काव्य कल्पना नहीं, जीवन का सच है। आसन्न का संकेत है कि अभी हाल ही में अंधेरा समूचे दृश्य पट को लील लेगा। कहीं कुछ भी किंचित भी नहीं दृष्टव्य रहेगा, किंतु मोरू पंत ये जीवन का अंत नहीं है, यात्रा का अंत भी नहीं है। अवसान के बाद उदय, तिमिर उपरांत आलोक, सनातन सृष्टि क्रम को तो बदला नहीं जा सकता ना।
1: किंतु पंत प्रधान श्रीमन,
0: मोरू पंत हताशा की इस घड़ी में टूटने से बात नहीं सदेगी। हमें आने वाले कल पर विश्वास होना चाहिए। हमारी उम्र तो ढलान पर है, हम कुछ नहीं कर पाए। नियति का स्वीकार्य यही था, लेकिन हमारे बाद की नई पीढ़ी है। नाना साहब हैं, राव साहब हैं, उन्हें ये झंडा उठाना पड़ेगा। मुक्ति पथ उनके लिए प्रशस्त है। ईश्वर उन पर कृपा करे। अब हम तो यहां ठहर गए हैं मोरू पंत, पतित पावनी गंगा के इस किनारे पर। ये लोग बिगाड़ कर परलोक को सुधारने के लिए।

0: आप सचमुच सभी कुछ त्याग बैठे हैं। श्रीमंत, आप अभी भी पेशवा हैं, अभी भी सूबेदारों का प्रधान पद और अधिकार आपके पास हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संचालन सूत्र संभालकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता आप में है।
1: मोरोपंत, बस देश की तकदीर बदलने की लगन लगी रहे, यही काफी है। हाल फिलहाल तो हालात बदलते नजर नहीं आते। पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा जो मुक्ति के अनुष्ठान का नेतृत्व कर सके। हां, हो सकता है कि कल किस्मत बदले, देश के दिन फिरें। बहुत बहुत अंधेरा हो रहा है। एक बात बताओ, व्यायामशाला से नाना साहब लौटे या नहीं?
0: अभी तक तो लगता है वापस नहीं आए, ना नाना साहब और न राव साहब और ना ही मनु, आते ही होंगे।
1: नाना साहब और राव साहब को तो समझ में आता है, भाई पुरुष हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी पुरुषोचित होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये मनु, उसे तीर तलवार और कुश्ती से क्या लेना देना?
0: श्रीमंत, आचार्य बालाजी चाहते हैं, उनका कहना है कि रण कौशल पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, और वो तो ये भी कहते हैं कि
1: रुक क्यों गए, बात पूरी करो। और क्या कहते हैं आचार्य बालाजी?
0: दृष्टता क्षमा हो श्रीमंत, वो कहते हैं कि ऐसा कठिन समय है कि मातृभूमि को केवल पुरुषों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, देश की रक्षा के लिए मिलजुल कर कृपाण उठानी होगी, अंग्रेजों से बच्चे बच्चे को जूझना होगा।
1: शायद वो ठीक कहते हैं, अनुभव की सीख तो यही है। लेकिन मोरोपंत, आपको नहीं लगता कि अब मनु के विवाह पर भी सोचना चाहिए? उसकी आयु अब इस योग्य हो चली है।
0: श्रीमन, मेरी भी चिंता यही है, किसी योग्य वर की तलाश है मुझे, नाती रिश्तेदारों को भी कहलवाया है, देखिए कब संयोग बनता है। आ रही हूं पेशवा।
1: कहां? अरे भाई, वो तो कोई घुड़सवार है।
0: यही है हमारे बच्चे, हमारी आशा, हमारा विश्वास।
2: आजादी के महासंग्राम की तैयारी के लिए चटसार बन गई थी बिठूर में बाला गुरु की व्यायामशाला।

बिठूर के बाला गुरु की पाठशाला में जिस इतिहास की पीठिका पर नवागत शक्तियों का पल्लवन हो रहा था, उन पर दायित्व आने वाला था मुक्ति की मशाल को जलाए रखने का। ऐसी मशाल जिसके उजाले में देश अपनी संभावनाओं को देख समझ सके और व्यवधानों पर संकल्पित प्रहार कर सके। जागरण का एक नया राग जो संवेद स्वरों से गूंजे और निनादित करे।

0: पंत प्रधान पेशवा की सेवा में रामचंद्र राव प्रणाम प्रस्तुत करता है।
1: यशस्वी हो, पधारिए। क्या समाचार हैं आचार्य बालाजी और उनकी व्यायामशाला के? अरे भाई, पठन पाठन में कोई व्यवधान तो नहीं है?
0: अनुकंपा कृपा है श्रीमंत की, सब कुशल और यथोचित है।
1: कैसे पधारना हुआ?
0: आचार्य श्री का संदेश था, उन्होंने कहलवाया है कि उनके बाल सहपाठी तात्या दीक्षित देशाटन करते हुए बिठूर में पधारे हैं और आपके दर्शन लाभ की अनुमति चाहते हैं।
1: अहो भाग्य, पंडित शिरोमणि तात्या दीक्षित स्वख्यात मनीषी और ज्ञानी हैं। उनके चरणों की रस से बिठूर की भूमि पवित्र हुई। मोरो पंत बुआ, उनके आदर सम्मान का राजकीय प्रबंध करें।
2: जो आज्ञा पंत प्रधान।
0: ये कष्ट ना उठाइए, तात्या दीक्षित के आवास विश्राम का यथोचित प्रबंध व्यायामशाला में हो चुका है। यो भी अब कैसी राजकीय व्यवस्था, काल चक्र की कृपा से हमारा समाज तो साधारण जनों का समाज बन गया है। तात्या दीक्षित जैसे यहां वैसे वहां।
1: ठीक कहते हो तुम, सभी भूमि गोपाल की। हमने तो तात्या दीक्षित की सुविधा की दृष्टि से कहा था, फिर भी कोई आवश्यकता हो तो संकोच न करें। तात्या दीक्षित के दर्शन हम भी करने के लिए उत्सुक हैं। बहु सुश्रुत देवज्ञ हैं, वर्तमान और अतीत में उनके लिए अलक्ष्य कुछ भी नहीं है। अरे भाई, हम भी जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है।
0: शायद वही बता सकें, किंतु श्रीमंत, हमारे आचार्य बालाजी कहते हैं कि मनुष्य की नियति में अदृष्ट कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो चुनता है वही कालक्रम उसके लिए बुनता है।
1: अब क्या कहें, दो महापुरुषों के बीच की बात है। एक शास्त्रों का साक्षी है और दूसरा शस्त्रों का पक्षधर। शास्त्र और शस्त्र के इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। बताइए कि तात्या दीक्षित के दर्शन कब सुलभ हो सकेंगे, हम उत्सुक हैं।
0: वो हमारे साथ ही पधारे हैं और बाहर प्रतीक्षारत हैं।
1: ओह, उन्हें ससम्मान लाइए।
3: प्रणाम विप्रवर, प्रणाम।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम।
4: प्रणाम। प्रणाम। यशस्वी भव। कैसा परिदृश्य अनुभव कर रहे हैं पेशवा इन दिनों? गंगा के इन नीरव निर्जन किनारों पर पूना के वैभव की स्मृतियां विचलित तो नहीं करती?
1: हम उन्हें लगभग भूल चुके हैं पंडित राज। लाभ भी क्या है याद करने से, बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं है ना। अब जो है और

0: जैसा है वही ठीक है।
1: धन्य है ये योगियों जैसी तटस्थता। कुरुक्षेत्र का स्मरण हो आया। रणभूमि में शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपने धनुष्वाण पटक दिए और

0: आप तो स्थान स्थान पर देशाटन करते रहते हैं, कहीं आपको प्रफुल्लित करने वाले दृश्य मिले?
1: क्यों नहीं, हमारे बाल सखा की व्यायामशाला तक जाने का कष्ट नहीं किया पंत प्रधान। कभी आकर तो देखिए कि साहस किस तरह शौर्य के सांचों में ढलता है।
0: बाला गुरु के प्रयोगों के लिए हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। प्रश्न अब युद्ध कौशल सीखने का नहीं रहा है, वो तो किशोरों का मनोरंजन मात्र है।
1: दीक्षा और शिक्षा को मनोरंजन कह रहे हैं श्रीमंत? वाह वाह, क्या किशोरों और तरुणों को आगत का सामना करने की तैयारी नहीं करना चाहिए? मैंने अपने देशाटन में अनुभव किया है, देखा है, भीतर ही भीतर कुछ तप रहा है, कुछ उबल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी हो। बड़वानल है जो क्रमशः विस्फोटित होगा, और तब पंत प्रधान की भूमिका क्या होगी?
0: आपकी भांति त्रिकालज्ञ होने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है विप्रवर। हम तो साधारण जन हैं, साधारण जन।
1: साधारण जन ही इस उद्घोष को दिग्दिगंत तक फैलाएंगे पंत प्रधान। मैंने वो खेत देखे हैं जिन्हें बीजों और अंकुरों का इंतजार है, वो पगडंडियां और प्रशस्त पथ जो यात्रा तुरपाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी रणस्थलियां जो जनता के सूर्यनाद के लिए तैयार है। सारा समूचा देश आहट सुन रहा है, रण निनादित हो रहा है। इस धर्म युद्ध को जो नहीं लड़ेगा वो अपने कर्तव्य और यश से विमुख हो रहा होगा और पाप का भागीदार होगा। मिथ्या भावुकता, दुर्बलता और कायरता ही तो वास्तविक पाप है।
0: सुनने में अच्छा लगा विप्रवर। काव्य को कर्ण मधुर तो होना ही चाहिए, सिद्ध कवियों ने ऐसी साधना की है।
1: पंत प्रधान, केवल कर्ण मधुर ही काव्य नहीं होता। परिभू स्वयंभू कविर मनीषियों के कंठ से युग के स्वर आकार लेते हैं। पेशवा, मनुष्य को कभी शेष और लाभ के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। ये जोड़ बाकी गुणा भाग केवल पश्चाताप मोह और अवसाद देता है, समय को इनकी आवश्यकता या वांछा नहीं है।
0: इन उपदेशों से हम लाभान्वित हुए विप्रवर, किंतु एक निवेदन था।
1: कहिए।
0: ये हमारे प्रिय मोरोपंत तांबे हैं।
1: परिचित हूं इनसे, काशी में इनसे भेंट हुई थी, तब ये चिम्मा जी के साथ थे। इनकी एक कन्या थी, कहाँ है वो?
0: यही है, और ये भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। कन्या अब आयु प्राप्त कर चुकी है और मोरोपंत उसके उचित संबंध के लिए व्याकुल हैं। आपका महाराष्ट्रीय परिवारों में खूब आना जाना है, यदि संबंध में सहायता कर सके तो महती कृपा होगी।
1: भरसक प्रयत्न करूंगा। कन्या की जन्म पत्रिका उपलब्ध है क्या?
2: जी, अभी प्रस्तुत करता हूं, लीजिए।
1: अद्भुत अद्भुत। मोरोपंत बुआ, परम तेजस्वी है आपकी कन्या, ऐसी जन्म पत्रिका मैंने अरसे से नहीं देखी। वाह शानदार, मेरा विश्वास और भी प्रबल हुआ। स्वतंत्रता के महायज्ञ की समिधा बनेगी ये यशस्वी कन्या, इसके जीवन से इतिहास के पृष्ठ आलोकित होने वाले हैं। मोरोपंत, जनक के रूप में आप भी अभिनंदनीय हैं।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमरवीर बलिदानी झांसी वाली रानी की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। एक संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना जगाई और अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों के लोगों को एकजुट किया। इससे आज भी देश की पहचान को मजबूती मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, राजेंद्र शुक्ल रीवा और जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर साझा विषय को सुरक्षित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री यादव ने लोगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हाथी आने वाली पीढ़ियों तक भारत के जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। और प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पिछले 3 दिनों में SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
2: महिला सभा कार्यक्रम का आज का सफर आप तय करेंगी अपनी दोस्त ज्योति शर्मा के साथ। आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, नए पौधे लगाने के लिए बरसात का मौसम एकदम परफेक्ट होता है। हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, वो भी पौधे के समान होते हैं। हर बच्चे की सोच, दुनिया को देखने का नज़रिया, सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए सभी बच्चों को हम एक ही तरह से नहीं देख सकते, उनकी परवरिश भी एक ही प्रकार से नहीं हो सकती। प्यार तो हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेइंतहा करते हैं, पर ये हमें देखना होगा कि किस बच्चे को कब हमारे प्यार की ज़रूरत है और कब हमारे सख्त अनुशासन की। कहीं हमारे प्यार का ओवरडोज हमारे बच्चों की जड़ें खराब तो नहीं कर रहा। कहीं हमारे द्वारा बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करना, उसकी गलत बातों को बचपना समझकर अनदेखा करना और अपने बच्चे से कुछ भी काम ना करवाना उसकी ग्रोथ तो नहीं रोक रहा। सखियों, बचपन में बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ गलत करते ही हैं, जैसे गलत बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं और किसी के साथ में गलत व्यवहार भी करते हैं। पर कुछ पेरेंट्स इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि अरे बच्चा है, बड़ा होगा ना तो नहीं करेगा, अपने आप समझेगा। पर सखियों, यहाँ ये समझना होगा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ समय के साथ बदलते हैं, बड़े होने पर खुद समझते हैं, पर कुछ बच्चों को यदि सख्ती से ना समझाया जाए तो फिर ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है। सखियों, कभी कभी हमसे एक गलती ये भी होती है कि हम अपने बच्चे की क्षमता और प्रतिभा को भी अनदेखा करते हैं और दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करते हैं। ऐसे में उस बच्चे का कोमल मन और उसकी क्षमता और प्रतिभा कुम्हला जाती है। तो सखियों,

बच्चों को समझिए, उन्हें ऐसी परवरिश दीजिए कि वो कल के आदर्श युवा बने। ऐसे गगन की छांव में उन्हें पालिए जहां गम आंसू ना हो पर अच्छे संस्कार जरूर हों।

सखियों, बचपन बहुत कोमल होता है। बाल्यकाल में हुई घटना बच्चों के मन मस्तिष्क पर इस तरह अंकित हो जाती है कि उसकी टीस आजीवन रहती है। और आजकल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार

0: के केस बहुत देखने में आ रहे हैं। सखियों, इसी सिलसिले में जानकारी देने के लिए आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता। पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा और कानून विषय पर एडवोकेट रागिनी मिश्रा से बातचीत कर रही हैं धम्म मित्रा।
1: छोटे बच्चों के साथ आज समाज में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, वो एक बहुत ही दुखद चीज है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट रागिनी मिश्रा जी को, जो जिला एवं सत्र न्यायालय में पॉक्सो समिति की सदस्य हैं। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप पॉक्सो समिति की सदस्य हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट है क्या?
2: जी, ये पॉक्सो एक्ट भारत में संसद द्वारा एक अलग से एक्ट बनाया गया था, किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है। इसमें बच्चों की, जो 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। इसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है
1: जी।
2: और ये सारे जिलों में, सारे भारत में जितने भी अपने कोर्ट हैं, इनमें सब में है, और इनके लिए विशेष न्यायालयों की अलग से स्थापना की गई है
1: जी। तो पॉक्सो एक्ट अलग से इसको बनाने का उद्देश्य क्या है?
2: आजकल समाज में आप देखते हैं कि बच्चों के साथ कितने अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, घर में, समाज में, जहाँ भी वह जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, खेलने कूदने के लिए जाते हैं, पार्कों में जाते हैं
1: जी।
2: तो हर जगह बच्चे अकेले होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं
1: जी।
2: उनके साथ में क्या है कि अलग अलग प्रकार से लोग वाग, आजकल दूषित मानसिकता के लोग हैं, अलग उनकी सोच अलग है
1: जी।
2: तो कुछ इस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से बच्चों को बचाने के लिए इस एक्ट का संशोधन किया गया है।
1: मैडम, आप ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट के तहत हम कौन से अपराध जो होते हैं बच्चों के साथ, वो इसके अंतर्गत आते हैं?
2: पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं, वो होते हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनको कोई ऐसी पिक्चर दिखाना, इशारेबाजी करना, और छोटे बच्चों के साथ जो भी इस प्रकार से कोई करता है, जो इनकी उम्र 18 साल से कम की होती है, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है तो वह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है।
1: यौन अपराध भी इसके अंतर्गत?
2: हाँ, यौन अपराध भी आते हैं, लैंगिक अपराध भी आते हैं, और लैंगिक हमला भी होता है जो किसी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, तो वो सारे एक्ट के अंतर्गत आते हैं, सारे अपराध
1: जी। जी, आपने बताया कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होता है, तो क्या ये एक्ट जो है लड़के और लड़कियां दोनों पर ही क्या ये एक्ट
2: जी
1: लागू
2: होता है? यह एक्ट दोनों पर लागू होता है जो 18 साल से कम उम्र के हैं
1: जी। जी, आप बहुत समय से ऐसे केस देख रही होंगी, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके के केस आपके पास आते हैं?
2: देखिए, मैं वर्ष 1991 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं 2002 से 2004 तक अपने जिला सत्र न्यायालय में गवर्नमेंट एडवोकेट रही हूँ, और वर्तमान में इस समय मैं पॉक्सो समिति की सदस्य हूँ। तो जब मैं केस लड़ती हूँ, मेरे पास बहुत सारे इस प्रकार के केस आते हैं, तो ये केस अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था, तो वो टीचर थे विद्यालय में, उनके द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया गया था, वो आया था। अब उसमें क्या है कि वो बच्ची ने बहुत समय तक अपने घर में नहीं बताया, फिर कोई प्रॉब्लम हुई, मदर ने वॉच किया, देखा, फिर कंप्लेंट हुई, फिर ये केस आते हैं। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ भी किसी भी को एजुकेशन में पढ़ते हैं या अलग से जाते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के अपराध, इस प्रकार के केस कोर्ट में आते हैं। और ये टीचर हैं, जे कोई वर्कर हैं, ऑटो वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ बच्चे आना जाना करते रहते हैं
1: जी,
2: उनके साथ इस प्रकार का अपराध किया जाता है
1: जी। जी, इस तरह के जो अपराध होते हैं, वो एक बहुत ही खराब मानसिकता के लोगों के द्वारा की जाती है, इसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान होता है?
2: देखिए, पॉक्सो एक्ट में 46 सेक्शन है, और इसमें जो मेन हैं वो 3, 4, 5, 6, 9, 10 हैं। तो इसमें जो सेक्शन 3 और 4 है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ में उनके यौन पार्ट को छूना, उनको हैरस करना, उनके वेस्ट पे हाथ रखना, जो अलग अलग प्रकार से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि बच्चे डर जाते हैं। और इसमें सजा का प्रावधान यह है कि ये 3 और 4 में 10 साल की सजा है, इसमें न्यूनतम सजा 3 ईयर की है, 3 ईयर से लेकर 10 ईयर है, 20 ईयर है, और आजीवन कारावास है, और यहाँ तक की फांसी भी। तो यदि ये केस प्रूफ होने पे होता है कि किस बच्चे के साथ क्या किया, उस सबसे अधिक सपोर्टिंग मेडिकल होता है। यदि मेडिकल में भी सारी चीज़ें आती हैं और बच्चे सपोर्ट करते हैं, उनके मदर फादर सपोर्ट करते हैं, एविडेंस क्लियर होती है, तो एक्यूज को फांसी की सज़ा भी होती है
1: जी।

0: मैडम मान लीजिए किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है और वो घर में अपनी मदर को बताती है, तो मदर अगर पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती है या वो उस अपराधी को उजागर करना चाहती है तो किस तरीके से कर सकती है?
1: यदि किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है, वो अपने घर में बताती है, तो घर वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि उस बच्ची को अच्छे से मेंटल रूप से प्रिपेयर करें और समझाएं कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसको अपन को दबाना नहीं है। और जिसने भी किया है उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ ही जाएं। यदि आपका घर कहीं दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर पर थाना है या कहीं है तो नहीं जा पाते, तो आप मोबाइल द्वारा या लेटर लिख के किसी भी प्रकार से कर सकते हैं इसकी रिपोर्ट और उनको सजा दिलवा सकते हैं।
0: मैडम कई बार अपराध हुआ है तो सामाजिक दबाव भी रहता है उनको मन में, कई बार अभिभावकों को लगता है कि बच्चे का नाम कहीं आएगा तो फिर बच्चे के फ्यूचर को लेके चिंता होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये एक्ट इसलिए बना हुआ है, इसमें बच्चों का नाम उजागर नहीं किया जाता है, ना उनकी पहचान उजागर की जाती है, ना उनकी फोटो दी जाती है, यहाँ तक कि नाम भी उजागर नहीं, और उनका जो रेजिडेंस है ना वहाँ तक भी नहीं बताया जाता है कि वो एरिया के रहने वाले हैं, जिससे कि बच्चों की पूर्णता सुरक्षा रहती है और बच्चों के भविष्य पर कोई इस पर दुर्व्यवहार नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हो सकता है कि इसके लिए कानून में ये सबसे अच्छी सुविधा है कि बच्चे बड़े होते हैं, आगे जाकर कुछ बनते हैं या उनकी शादी ब्याह होती है लड़कियों की, तो उनको कहीं भी इस प्रकार से नीचा ना देखना पड़े समाज में। इसलिए इसमें पेपर में, मीडिया में कहीं भी इनका नाम नहीं दिया, यहाँ तक कि कोर्ट में जब स्टेटमेंट होते हैं और FIR होती है उसमें भी इनका नाम लिख नहीं किया जाता है, इनको पीड़िता के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: जी जी मैडम, इस तरीके से जो केस चलता है तो इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: इसमें यही चुनौतियाँ होती हैं कि भाई हमें पूरा अपना प्रूफ करना है, केस कैसे क्या हुआ था बोलना है, वहाँ पर बच्चों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मैन तो स्टेटमेंट बच्ची के होते हैं जो एक कोर्ट में होता है और एक कैमरा ट्रायल होता है, इसमें सबके सामने नहीं किया जाता है। तो इसमें बच्ची जो बोलती है उसको स्टेटमेंट कोर्ट करती है और बच्ची के बयान पर ही चुनौतियाँ ये होती हैं कि भाई कोई एक्यूज़ है, उनने 4 लोगों को खड़ा कर दिया, उस समय हम थे ही नहीं यहाँ पर, या हमने एक किया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर केस में मेडिकल ही होता हो, बहुत सारे केस ऐसे हैं यदि किसी ने किसी को कोई चित्र दिखा दिया, अब उसके लिए क्या प्रूफ है बताइए कि हमने दिखाया, तो हमें सिद्ध करना होता है कि आप उस समय वहाँ थे और आपने ये कृत्य किया है।
0: जी मान लीजिए ये पीड़िता का जो केस था वो अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में जिसने अपराध किया है उसका नाम उजागर होता है क्या?
1: हाँ, जिसने अपराध किया है उसका नाम चार्जशीट में भी होता है और उसका नाम उजागर भी किया जाता है, जिससे कि समाज में इस प्रकार से पुनरावृत्ति ना हो और लोग पढ़ें और इसका प्रभाव पड़े कि भाई अब आगे इस पर एक व्यक्ति को ऐसी सजा हुई है तो अब किसी को ये काम नहीं करना है।
0: बिल्कुल मैडम, अब आप ये बताइए कि जैसे घर में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो घर के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं?
1: आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग घर के ही इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें फादर, ब्रदर, पड़ोसी या रिश्तेदार, चाचा, मामा, बच्ची कहीं जाती हैं तो उनके साथ में इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अपने घर परिवार में ही ज़्यादा हो रही हैं, तो सबसे पहले तो मदर फादर को अवेयर होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं और कहाँ छोड़ रहे हैं और कितने समय तक छोड़ रहे हैं, और जब बच्चे को हम वापस लेते हैं तो हमें उससे सारी जानकारी लेनी चाहिए।
0: मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो मदर कहाँ पर अपनी शिकायत कर सकती है?
1: तो मदर जाकर सबसे नज़दीकी थाना जो हो वहाँ कर दे।
0: मैडम कई बार बच्चे, उनके साथ अगर कोई अपराध होता है तो वो शांत हो जाते हैं, वो नहीं बता पाते अपनी समस्या को, मान लीजिए काफ़ी समय के बाद, 1-2 साल के बाद वो बता रहे हैं, तो क्या फिर भी ये एक्ट लागू होगा?
1: हाँ, यदि किसी बच्चे के साथ में कुछ हुआ है और टाइम निकल जाता है, वो डर के मारे नहीं बता पा रहा है या किसी कारण से उनको प्रेशर में लिया जाता है कि यदि तुम बताओगे तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को कर देंगे, भाई बहन को कर देंगे, तो यदि उसके साथ माइनर के समय में कोई अपराध घटित हुआ है और यदि वो टाइम निकल गया है और यदि वो लगातार जारी है वो अपराध और वो बच्चा फिर आगे जाकर मेजर हो जाता है, तो भी यदि वो कंप्लेंट करता है तो वो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन उसी डेट से चलेगा जब वो माइनर थी।
0: मैडम आपने आज पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी और इसे समझ के हमारे अभिभावक जानकारी का उपयोग जरूर करेंगे। मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, पॉक्सो एक्ट, बच्चों की सुरक्षा और कानून विषय पर एडवोकेट

रागिनी मिश्रा से बातचीत कर रही थी धम्म मित्रा। सखियों, कभी कभी बच्चे अपने साथ हुई दुर्घटना से इतने आहत हो जाते हैं कि किसी से कुछ शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बता पाते। हमें ही उनके व्यवहार में बदलाव को समझते हुए कुछ करना होगा। जैसे उनकी कॉपी के लास्ट पेज को देखें, वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें समझ आएगा कि हमारा बच्चा क्यों चुप है, या फिर हम जो हमारे बच्चे से बहुत क्लोज है उससे बोलें कि वो बच्चे से बात करें, या फिर हम अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास ले जाएं। सखियों, ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, तभी हम अपने बच्चे के मन को पढ़ पाएंगे। सखियों, सावन का महीना चल रहा है। प्रकृति की सुंदरता जितनी सावन के महीने में देखने मिलती है ना, उतनी फिर नहीं मिलती। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पर हाँ, लगातार वर्षा से कुछ परेशानियाँ तो ज़रूर होती हैं, जैसे जगह जगह पर जल भराव हो जाता है, जिसके कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है, कपड़े नहीं सूख पाते। पर सखियों, ये जो परेशानियाँ हैं ना, ये कुछ समय की होती हैं, पर बरसात का ये जो पानी है ना, ये हमारे साल भर तक काम आता है, क्योंकि बरसात के पानी से ही तो वाटर लेवल बढ़ता है, कुओं में, बांधों में, नदी में, यहाँ तक कि घर के बोरिंग में भी और तालाबों में भी पानी का लेवल बरसात के पानी से ही बढ़ता है। सखियों, बरसात के पानी का संचय यदि हम करते हैं ना, तो गर्मियों में पानी की जो परेशानी होती है ना, वो दूर हो सकती है और जल का संरक्षण भी हो जाता है। क्योंकि यदि बरसात औसत या औसत से कम होती है, तो फिर गर्मियों में जल संकट की स्थिति बन जाती है, और पानी की कमी से हम कितने परेशान हो सकते हैं, ये हमसे बेहतर और भला कौन जान सकता है। तो क्यों ना हम जल संरक्षण की शुरुआत अपने घर से ही करें। सखियों, अपनी रोज़मर्रा की आदतों को बदलकर हम हजारों लीटर पानी खुद बचा सकते हैं। कैसे? अब सखियों, जैसे हम बहते पानी में अक्सर काम करते हैं ना, फल धोना, सब्जियां धोना, और समय नल भी खुला छोड़ देते हैं, तो अगर ऐसा ना करके हम किसी बर्तन में पानी भरकर धोएंगे ना फल और सब्जियां, तो इससे पानी की बचत होगी, और जिस पानी से हम फल और सब्जियां धो रहे हैं, वो पानी हम अपने पौधों की क्यारियों में भी डाल सकते हैं। सखियों, आरओ से निकलने वाले पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, पोछा लगाने में, गाड़ी धोने में, पेड़ पौधों में डालने में, या फिर कपड़े धोने में। और सखियों, हम जो फ्रोज़न सामान को पिघलाने के लिए बहते पानी का उपयोग करते हैं ना, अगर हम ये ना करें, उसे 2 से 3 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख दें, हमारा पानी बच जाता है। और अगर घर में किसी भी नल में थोड़ा सा भी लीकेज हो ना, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को तभी चलाएं जब उनमें पूरे बर्तन और कपड़े हों, और अपनी गाड़ियों को लेजम से ना धोकर बाल्टी में पानी लेकर धोएं। सखियों, एक ज़रूरी बात, सड़क से जाते वक्त यदि कभी भी कहीं भी नल बहता हुआ देखे ना, तो उसे तुरंत बंद करें, और यदि कहीं कोई पाइपलाइन टूटने से पानी बहता देखें, तो तुरंत संबंधित हेल्पलाइन पर कॉल करें। जल है तो कल है, ये हम सभी जानते हैं, पर इसे दिल से मानना शुरू कर देंगे ना, तो हम कभी भी जल संकट की स्थिति में नहीं आएंगे। फिलहाल तो सखियों, बरखा बहार है, तो इस रेनी सीजन को एंजॉय करते हैं इस गीत के साथ।

0: सखियों कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब जो भी करने की हमारी इच्छा होती है ना, हम जिसे बहुत शिद्दत से चाहें, चाहे वो कुछ भी हो, आगे की राह हमें वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है और जिस पर चलकर एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होता है। विज्ञान विषय की चाह नहीं, एक बालक के वैज्ञानिक बनने की राह बनाई। वो वैज्ञानिक जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1919 को हुआ था। उनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई और माता का नाम सरला साराभाई था। गुजरात कॉलेज से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट करने के बाद सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ कैम्ब्रिज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत लौट आए और बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में कार्य करने लगे। इसरो की स्थापना डॉक्टर साराभाई की महान उपलब्धियों में से एक है। रूस द्वारा प्रथम अंतरिक्ष अभियान स्पूतनिक के प्रमोशन के बाद उन्होंने भारत सरकार को भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व से परिचित कराया। उनके प्रयासों से हमारे देश ने भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आरंभ किया। विक्रम साराभाई ने विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थानों की स्थापना की और अनेक संस्थानों की स्थापना में सहयोग भी किया। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई नवयुग की स्थापना हेतु छात्रों के लिए विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि विज्ञान जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। विक्रम साराभाई ने कहा था, हमें अपने लक्ष्य पर कोई संशय नहीं है। हम चंद्र और उपग्रहों के अन्वेषण के क्षेत्र में विकसित देशों की होड़ का सपना भी नहीं देखते, किंतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मानव समाज की कठिनाइयों के हल में अति उन्नत तकनीक के प्रयोग में किसी से पीछे भी नहीं रहना चाहते। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। सखियों, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम महिला सभा को यहीं संपन्न किया जाए, तो दीजिए अनुमति अपनी दोस्त ज्योति शर्मा को। आप सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है एक झूला गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रियंका शर्मा द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हिंदी वो धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है केके और सुनिधि की आवाज में, फिल्म टैक्सी नंबर 911 से।

विशाल शेखर का संगीत विशाल दालदानी के लिखे बोल केके और सुनिधि की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से। कार्यक्रम का अगला गीत केके और सुनिधि की आवाज़ में ही फिल्म खट्टा मीठा से।

0: प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खट्टा मीठा से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीख लेने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के रील के युग में युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद का जीवन दृढ़ संकल्प और संघर्ष से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस रैली में एनडीए के सांसद और बड़ी संख्या में समर्थक तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर बात होगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा बाधक नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और सीपीसीटी के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान से पूजा अभिषेक शुरू हुआ। बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन, आभूषण और फूलों से बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बात खेल की। प्रदेश की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े ने नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। खुशी ने वुमेन्स ईपी इंडिविजुअल स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की है। खुशी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी हैं और इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। खास बात यह है कि मैच भारत में होने के बावजूद अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान होगा। अफगानिस्तान लंबे समय से अपने घरेलू मुकाबले भारत में आयोजित करता रहा है।

0: अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले तीन दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और आज भी मानसून का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय रहेगा। इससे इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल और उज्जैन संभाग में कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और नदियां उफान पर हैं। बारिश को देखते हुए भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, एसएएफ, सीआईएसएफ, जेल गार्ड, होम गार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की संयुक्त परेड होगी और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सतना जिले के चित्रकूट में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। सर्वाधिक संख्या किसानों की है, जो अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने के लिए को लेकर इस अमावस्या को चित्रकूट पहुंचते हैं। बड़वानी में कल युवा संगम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 125 बेरोजगार आवेदकों ने पंजीयन करवाया, जिसमें 3 कंपनियों द्वारा 91 बेरोजगार आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू

0: होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान

0: का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस तिरंगे पर सारे चाहतों ये दिखाएंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
5: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
2: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

0: तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा। इस कार्यक्रम में हम आपके भेजे हुए पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है करीब और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की तरफ से। इसके अलावा हमें पत्र प्राप्त हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल का। इसके अलावा रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये पहला गीत।

अनु मलिक का संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल, संजीव ने और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगला गीत आपको सुनवाने का, जो है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म वास्तव से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। घंटाघर चौक खंडवा से हमें लिखा है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और चार डोंगरी से पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

जतिन ललित का संगीत, समीर के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म वास्तव से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का है और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सौतन से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की ओर से। इसके अलावा पत्र प्राप्त हुआ है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलकमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब।

उषा खन्ना का संगीत सावन कुमार के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सौतन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रॉकी से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की ओर से। इसके अलावा आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें लिखा है हमारे श्रोता अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुक टुक ने, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी, कोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित और परमानंद आर्य ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर्यभट्ट मुनका संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रॉकी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हिना से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की तरफ से। इसके अलावा हमें लिखा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रामेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। आदर्श नगर मलोट से हमें राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का भी पत्र प्राप्त हुआ है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांधकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आज शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा आज शाम 6:00। रात 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा सुनवाई जाएगी आज रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुनिएगा आज रात 8:15 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। नाटक सितार बज रहा है प्रसारित होगा आज रात 10:00। लेखक हैं श्रीकांत, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में आज रात 10:30 पर सुनिएगा कृष्णाराम चौधरी का शहनाई वादन राग केदार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है हरगोविंद कुशवाहा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
2: स्वीकार
1: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
2: खांसी
1: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
2: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है
1: जी।
2: तो पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
2: मेरा तो मन करता है।
1: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
2: हाँ और है ना वही वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल
2: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
2: मीठा होता है।
1: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज का
2: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
2: चट से पहन लेंगे।
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
2: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
1: जी।
2: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें
2: जी।
1: और अब हम क्या करें
2: गीत सुनते हैं
1: चलो।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई हैं। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग, ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान

0: विज्ञान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वो न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
0: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: कि
1: कहा।
0: ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
1: बिल्कुल। और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए?
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं
1: चलिए
0: गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं।
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा, इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफ़ी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिज़ाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
0: जी, और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है या
1: चुभ रहा है,
0: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियाँ रोज़मर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक, हल्का, सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर, आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे आप।

0: सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी.
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं, पर देखा है ना आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
0: हाँ
1: कुर्ते
0: बिल्कुल.
1: बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल. और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है. जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है.

0: गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: है
1: है
0: सखी
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई। इतना
1: क्यों?
0: सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ, और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज़ सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में वो
0: हमारे
1: हमें
0: साथ
1: साथ
0: रहती
1: रहती है और याद उनकी ताज़ा बनी रहती है।
0: है।
1: तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया, तो उसके लिए हम आपको
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद कहते
0: कहते
1: हैं।
0: हैं। और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती हैं, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और ख़ासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ
1: हाँ,
0: सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती हैं ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती हैं जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है, पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है, और
1: बिल्कुल।
0: बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियाँ भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के ज़माने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद ज़रूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है, और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं, तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए, जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है, बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादीय लेख जो होती है, संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पर लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन वो
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग से
1: करना
0: ना
1: है।
0: उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना।

0: या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है। और साथ ही कहते हैं
1: जी ये पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है मेहनत से, व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता जगमगा को तकदीर का जगमाता जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचने हमें पहुँचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो ज़रूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता ज़रूर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: और
0: और
1: धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने
0: आप
1: सुंदर
0: किस
1: सुंदर
0: इतने
1: मैसेज
0: सुंदर
1: लिखते
0: सुन
1: हैं।
0: बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा,
1: जी
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है,
1: क्या बात।
0: विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है, कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथ ही कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है,
1: बात तो बिल्कुल सही कही।
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज़ के जिस चीज़ में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भुने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भुने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में उस इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले

0: बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
1: नहीं बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ऐसी पौष्टिक चीज़ें जब घर में बनती है ना और जब घर उस खुशबू से महकता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने। कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: बनती हरी आई हाय
1: दरिया किनारे एक बंगलो को पारी दे जो दे।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीज़ें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहाँ जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहाँ पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहाँ मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहाँ मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मज़ेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज़ है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप

0: आप कार्टून बनाते हैं? मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज़ भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट।
0: हाँ, वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज़ भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना, और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो।
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था, बैंगलोर में धीरे धीरे जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस ज़माने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज़ मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और
1: बिल्कुल, एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई मैं उनको कॉल किया करता
1: क्या
0: था।
1: बात है, मैं भी।
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फ़ोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर
1: गाना।
0: जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल, जरूर।
0: शैलेंद्र।
1: हाँ, सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू।
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था। मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहाँ जाऊँ, उस चैनल में जाऊँ और मैं बोलूँ मैं ये करता हूँ। तो मैंने मेरे सैम्पल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहाँ से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही हैं देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब ज़रा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। क्योंकि शारदा थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहाँ मुझे आना है, ये चीज़ मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो मैं कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे अब बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफ़र थी और ठीक ठाक ऑफ़र थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मज़ा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए हैं, तो अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहाँ पहुँचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए,

0: गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: हाँ,
0: वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियाँ दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया। उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग,
1: हैं।
0: तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहाँ पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहाँ से शुरू होती है जर्नी। हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक। तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही, लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं, लेकिन बना लूँगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान थी, मगर ये था कि मज़ा था उस काम में, बहुत मज़ा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में है। तो तो वो उसकी भी बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया।

0: वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज़। तो दरिबा डायरीज़ का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी।
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज़ वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज़ कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में। हाँ उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह।
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज़ बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज़ हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड
1: वाह वाह
0: मैं
1: वाह।
0: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज़ डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की ज़रूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूँगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूँगा, मैं एडिट पे भी बैठूँगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है, तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहाँ हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहाँ उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर, मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मज़ा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते जाते हैं उनको ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ हाँ
1: पंच।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं।

0: सकता था हमने। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो एक फेक एड आएगा उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल।
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पर ज़्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ,
1: ओ
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: पे
1: एंड्स छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल।
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस ख़रीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज़ हमने किए। उसके बाद काफ़ी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज़ किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरी जंका, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका के
1: बिल्कुल
0: अंदर।
1: बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: Samba.
3: No.
2: Rumba.
3: No.
2: Samba.
3: No.
2: Tequila.
3: No.
2: Tango.
3: No.
2: Charleston.
3: No.
2: Polka.
3: No.
2: No.
3: No.
2: तो फिर क्या हो? One.

बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है न्यूज़ हेडलाइन से, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। विधेयक का लक्ष्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान के साथ पूजा अभिषेक शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन संभाग के रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, साथ ही बदलते मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मशीनें लिख रही हैं, बोल रही हैं, गा रही हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या कोई मशीनी आवाज़ एक सच्ची मानवीय आवाज़ की गर्माहट और एहसास की जगह ले सकता है? इसी विषय पर आज हम करेंगे एक दिलचस्प चर्चा। ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सुबह की पहली चाय, खिड़की से आती हल्की हवा और कानों में गूंजती एक जानी पहचानी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल को छू जाती है। यही है रेडियो की जादुई दुनिया। और आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के तेज युग में जी रहे हैं, तब एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने है। क्या कोई मशीनी इंसानी आवाज़ की गर्माहट, उसकी भावनाएं और उसका अपनापन कभी महसूस करा सकती है? दोस्तों, हर दौर बदलता है, तकनीक भी बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती और वो है अपनापन, भावनाएं और इंसानी आवाज़। और इन्हीं एहसासों को शब्द और संगीत में पिरोता हुआ यह खूबसूरत सा गीत, और इसके बाद हम लौटेंगे अपनी आज की चर्चा के साथ।

दोस्तों, इस मधुर से गीत के बाद बढ़ते हैं आज के विशेष संवाद की ओर। कहते हैं कि समय बदलता है, साधन बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर दौर में इंसान के दिल के सबसे करीब रहती हैं। उन्हीं में से एक है आवाज़। ज़रा एक पल के लिए अपने जीवन की सबसे प्रिय आवाज़ को याद कीजिए, वह आवाज़ जिसने बचपन में आपको डर लगने पर यह कहा था, मैं हूँ ना। वह आवाज़ जिसने आपकी पहली सफलता पर सबसे ज़ोर से ताली बजाई, या वह आवाज़ जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी याद आज भी आपके दिल में बसती है। सोचिए, अगर वही शब्द किसी मशीन की आवाज़ में सुनाई दे तो क्या वे आपके दिल को उसी तरह छू पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि आवाज़ केवल ध्वनि नहीं होती, वह भावनाओं का भी घर होता है। साथियों, आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का युग है। आज मशीनें हमारी भाषा समझ रही हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं और यहाँ तक

की इंसानों जैसी आवाज़ में बातें भी कर रही हैं, और कई बार तो यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वह किसी इंसान की है या किसी मशीन की। यह विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि तो है, लेकिन जब मन उदास होता है, जब अकेलापन महसूस होता है, तब हमें किसी एल्गोरिदम की नहीं बल्कि एक सच्ची, संवेदनशील और मानवीय आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है कि रेडियो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का साथी है। जब रेडियो जॉकी मुस्कुराकर कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हाल पूछ रहा हो। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है। यह आवाज़ सुनने वाले के मन में चित्र बनाती है, कल्पनाओं को पंख देती है और दूरियों को मिटा देती है। बिना चेहरे के भी रेडियो का एक गहरा रिश्ता बन जाता है। AI तेज है, सटीक है और उपयोगी भी है, लेकिन इंसान की आवाज़ में जो अपनापन, अनुभव और संवेदना होती है, उसे कोई मशीन पूरी तरह नहीं दोहरा सकती। रेडियो का इतिहास भी यही बताता है कि संकट की घड़ी में लोगों ने सबसे पहले रेडियो पर भरोसा किया। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई और उनका मनोबल भी बढ़ाया, क्योंकि रेडियो सिर्फ खबरें नहीं सुनाता बल्कि उम्मीद भी जगाता है। और युवा पीढ़ी के लिए यह समय अवसरों का है। हमें AI से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तकनीक तभी सार्थक है जब वह इंसानियत को मजबूत बनाए, न कि उसे कमज़ोर करे। आने वाला समय AI का भी होगा। नई नई तकनीकें आएंगी और हमारा काम पहले से आसान बन जाएगा, लेकिन अगर इस भागदौड़ में हम इंसानियत, अपनापन और एक दूसरे की परवाह करना भूल गए तो इतनी तरक्की का भी क्या मतलब। दोस्तों, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने प्रस्तुत है ये प्यारा सा गीत।

0: गीत के इन मधुर पंक्तियों के साथ अब समय है अपने विषय को आगे बढ़ाने का। आज हमने जाना कि एआई कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वह इंसानी आवाज़, संवेदनाओं और विश्वास की जगह नहीं ले सकता। तकनीक हमारी मदद कर सकती है, लेकिन दिलों को जोड़ने का काम आज भी इंसान ही करता है। अभी हम बात कर रहे थे एआई और रेडियो की, एक ऐसी तकनीक की जो हमारे संवाद के तरीके को बदल रही है। लेकिन तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसके पीछे सोचने वाला, सीखने वाला और नई दिशा देने वाला इंसान ही होता है। और जब बात इंसान की नई सोच, नई ऊर्जा और नए सपनों की हो, तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं हमारे युवा। क्योंकि आज का युवा सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि आने वाले कल की तकनीक और समाज दोनों को दिशा देने वाला है। और इसी युवा शक्ति को समर्पित है विश्व युवा दिवस। दरअसल युवा किसी भी समाज की सबसे सक्रिय और ऊर्जावान शक्ति होते हैं। उनके पास नए विचार होते हैं, नई ऊर्जाएं होती हैं और कुछ अलग करने का साहस होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि युवाओं को सिर्फ सलाह देने की नहीं, उन्हें अवसर देने, उनकी बात सुनने और उनकी क्षमता पर विश्वास करने की भी ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है आज ऐसी युवा शक्ति को जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। आइए सुनते हैं बातचीत राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर हर्षिता शुक्ला से। बातचीत कर रही हैं सुमित गौतम।
1: भारत युवाओं का देश है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की युवा है। आज समस्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की भारत के पास ही है और कल का जो भविष्य है भारत का युवाओं पर ही निर्भर करता है। आज विश्व युवा दिवस हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसी ही युवा को खेलों के क्षेत्र में जिन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया है और कई सारे खेलों के साथ वो जुड़ी रही हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हर्षिता शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में हर्षिता।
2: थैंक यू सर।
1: तो हर्षिता, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि
2: जी, मैं ग्वालियर की ही निवासी हूँ और मैं अभी फ़िलहाल कामल कॉमर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्केटिंग सिखा रही हूँ और बीपीएड कर रही हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से। बाकी मेरा खेल में जो आपने बताया कि हाँ वॉलीबॉल और बाकी सारे गेम्स भी हैं, तो स्केटिंग भी उनमें से ही एक है।
1: वॉलीबॉल में आपने नेशनल तक खेला है और अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया है।
2: हाँ जी।
1: उसकी जर्नी के बारे में बताएं, कब से खेलना शुरू किया और फिर कैसे ये आगे बढ़ी, इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, क्या आपके पीछे की कहानी है?
2: जैसे हर स्पोर्ट टीचर के या स्पोर्ट्स का शुरुआत स्कूल से होता है, वैसे ही मेरी शुरुआत भी स्कूल से ही हुई थी। पहले मैं ज़्यादातर एक रनिंग गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, मुझे टीम गेम्स का कुछ नहीं पता था। बट लकीली मेरे स्कूल में एक नई टीचर की नियुक्ति होती है, सीमा मैम, आई स्टिल रिमेम्बर हर, तो उन्होंने मुझे इस गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं नॉर्मल एक बैंड की कमांडर थी, कमांडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी मैम ने मुझे बुलाया, उन्होंने

0: बोला कि तुम्हारा बिल्ड अच्छा है, हाइट अच्छी है तुम्हारी, ये बॉल को एक बार एक सर्विस मार के देखो कैसी जाएगी। मैंने कि मुझे तो आता नहीं है, वॉलीबॉल में पहली बार टच कर रही थी, बट मैंने ट्राई किया एंड लकीली वो सर्विस मेरी ग्राउंड के पार भी गई। तो सब लोग इम्प्रेस हो गए थे कि अरे वाह, लड़की ने पहली बार में एक टफ़ चीज़ कर ली। तो तभी से मेरे इस गेम में शुरुआत हुई। मैंने अपना पहला स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल SGFI खेला, जिसमें मैंने पहली बार में ही एक अपने टीम को रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन टेनिस वॉलीबॉल। उसके बाद मेरी जर्नी 2019 में मैंने ओपन नेशनल खेला सब जूनियर। उसमें मैंने सीखा कि एक बड़े लेवल पे कंपटीशन कैसा होता है। बड़ी बड़ी टीम्स आई, मैंने बहुत सारी अपनी एज की लड़कियां जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खेलती है उनको देखा। बहुत ही इंस्पायरिंग था वो चीज़ कि एक अपने सिटी से निकल के फिर स्टेट लेवल खेलना, फिर नेशनल लेवल खेलना, एक बड़ा एक्सपोजर मिला। और फिर मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। मैंने अपने कॉलेज के RG से खेला, जोनल लेवल्स मैंने खेले काफ़ी। फिर मैंने अपने नया गेम, क्योंकि मैं गेम्स बदलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैंने एक नए जो मेरा बचपन से फेवरेट गेम था कॉम्बैट गेम, उसमें अपना एक बार चाल चला, उसमें मेरी भी सिलेक्शन हो गई थी। ऑल इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं खेल के आई रेसलिंग में।
1: रेसलिंग में चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी सारी उपलब्धियों के लिए। एक सवाल है कि आम तौर पर घरों में बच्चियों को है पढ़ने के लिए ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, खेलों के प्रति इतना मोटिवेशन उनको दिया नहीं जाता, लेकिन कैसा रहा माहौल आपका अपने घर में जब आप आगे बढ़ रही थी, तो आपके पेरेंट्स के क्या विचार?
0: जैसे मैं सुनती आ रही हूँ कि पेरेंट्स का पढ़ाई के ऊपर बच्चों को ज़्यादा फोकस रहता है या दिलवाया जाता है, मेरे पेरेंट्स उससे थोड़े अलग थे। मैंने जितनी मेहनत करी है उतनी ही मेहनत मेरे पिताजी और मेरी माँ ने करी है। सुबह सुबह उठना, उठ के मेरे लिए हर वो ऐसा खाना बनाना जिससे मुझे ताकत मिले, मैं थकूँ नहीं, मेरी माँ ने उसमें बहुत मेहनत करी। और मेरे पिताजी जब भी मुझे सीखना था, खेलना था, कहीं भी जाना था, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। मैं अकेले तेलंगाना Under 14 की मैं बात कर रही हूँ आपसे, जब मैं मतलब मात्र 13 या फिर 14 साल की रही होंगी, तब मैं अकेले तेलंगाना जैसी दूर जगह पे गई थी खेलने के लिए। मैं उड़ीसा जैसी दूर जगह पे गई थी। काफ़ी लोग नहीं मानते लड़कियों को इतना दूर भेजना, पढ़ने पे ध्यान रखवाना, लेकिन मेरे पापा ने कभी मना नहीं करा। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे फैमिली के ही सपोर्ट से हूँ। और जहाँ तक बात रही आपकी कहने की, हाँ पेरेंट्स लोग बच्चों को ज़्यादा फोर्स करवाते हैं पढ़ाई के लिए, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि पेरेंट्स जानते नहीं है कि खेल में भी करियर है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा था गेम है, मस्ती है, घूमना है, फिरना है, बट
1: खेलना है, उसे एंजॉय करना
0: उसे
1: है।
0: इंजॉय करना है। बट आज जब मैं इस एज में हूँ, आज मैं इस अपने गेम से जानी जा रही हूँ, अपने गेम से ही काफ़ी करियर्स को ओपन कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, जिससे वो उनको पढ़ाई के ऊपर ही ना फोर्स करें।
1: जैसा कि आप BPED कर रही हैं, आपने
0: हाँ
1: खेल को ही
0: जी
1: अपना कैरियर के तौर पे भी चुन लिया है, कब ऐसा टाइम आया, कब ऐसा मोमेंट आया जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब यही मेरा कैरियर है? मतलब पढ़ाई और खेल दोनों साथ में चल रहे थे आपके,
0: हाँ
1: लेकिन कब आपने ये तय किया कि अब खेलों की तरफ ही अपने आप को मोड़ना है पूरी तरीके से?
0: सर, सिंपल ऐसा रहा था कि जब एक इंसान एक अलग फील्ड चूज़ करता है, वो हर किसी से अलग हो जाता है। मेरे भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा सबसे छोटा भाई है वो इंस्पेक्टर का, हमेशा से उसको रहा है ड्रीम। बट मेरा थोड़ा फील्ड अलग था, मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग थी। मेरा हमेशा से था कि मैं किसी को कुछ सिखाना चाहती हूँ। बचपन में ही जब मैंने स्केटिंग, मैंने आपको बताया स्केटिंग भी करी है, तो मैंने स्केटिंग में भी 6 बच्चों को ट्रेन किया था एंड वो 6 बच्चे मेडल लेके आए। तो वो एक जो खुशी मिली मुझे अंदर से, वो खुशी मुझे शायद किसी जॉब करके नहीं मिलेगी। तो मेरा जो था ये करियर चूज़ करना इन गेम, ये स्टार्ट से ही रहा था। धीरे धीरे मुझे फील आने लगा था कि हाँ ये एट द एंड जाके मेरा करियर बन जाएगा। आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम KRG, मुझे फील्ड चूज़ करनी थी कि वॉट शुड आई चूज़, मैं क्या करूँ, मैं मास्टर्स को अपना कंटिन्यू करूँ या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूँ। तब मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई। वहाँ पे उन्होंने मैंने अपनी अपनी उपलब्धियाँ उनको बताई कि मैं नेशनल खेल के आई हूँ, अपने स्कूल की बैंड की कमांडर रही हूँ, सारी उपलब्धियाँ बताई। लेकिन जब उन्होंने मुझे नियुक्ति मतलब पद देने की बात करी, तो उन्होंने कहा आपके पास डिग्री नहीं है। हर प्लेयर को अगर हम ऐसा जॉब दे देंगे तो फिर ऐसे तो गली गली में फिरते हैं। वो मुझे बहुत हर्ट किया कि मेरी उपलब्धियों की

0: ऐसा कोई ऐसा कैसे कह सकता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपने गेम को भी एक नाम देने के लिए मुझे इससे रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा,
1: प्रॉपर
0: एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, BPED इज़ अ थिंग दैट आई हैव टू फोकस ऑन। तो मैंने BPED के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी चूज़ किया, मेरे घर के पास था, जा सकती थी, और अभी फ़िलहाल मैं वहीं से कर रही हूँ। तो आई कैन प्राउडली से कि येस, नाउ आई होल्ड अ डिग्री फॉर माई सर्टिफिकेट्स एंड दे आर नाउ सर्टिफाइड, कि हाँ अब मैं कहीं पे भी जाके मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिलेगी। तो दैट्स इट।
1: तो खेलों में भी कैरियर है, ये आप कहना चाहती हैं।
0: हाँ,
1: और आज हमारे युवक बहुत सारे खेलों की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छा रुझान बना हुआ है। मैं ये मतलब उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो खेलों को चूज़ कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए?
0: सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो फ्रॉम हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं हार्डवर्क उतना ही रखता हूँ, मिनिमम रखता हूँ, बस खेल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। आजकल मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो गेम्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो एक नया एक युवाओं में चलन हो गया, ट्रेंड हो गया, तो वो गेम्स को यूज़ कर रहे हैं। बट जो खिलाड़ी होते हैं असल, वो उसमें हार्डवर्क और मेहनत देते हैं। अब मेरा गोल क्या है कि अब जो परेशानियाँ मुझे हुई थी एज अ अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन, वो और लोगों को ना हो। या तो मैं स्कूल की टीचर बन के ग्रास रूट लेवल पे स्कूल के बच्चों को इस करियर के बारे में बताऊँ, या फिर मैं एक कोच बन के एक टीम को लीड करवाऊँ, या तो किसी का एक ट्रेनर बन के उसको पर्टिकुलर अपना ध्यान दूँ, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर बन के पूरी डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स में हेल्प करवाऊँ। तो ये मेरा रहा है।
1: जो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता था, उसका अभी जवाब आपने दे दिया कि आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या करना चाहती हैं। तो आप लोगों के साथ काम करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में लोगों को मोटिवेट करना चाहती हैं, ये तो काफ़ी बेहतर बात है। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपनी बातें रखी, हम लोगों से अपने जर्नी को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर हर्षिता शुक्ला से बातचीत। इनसे बात की सुमित गौतम ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि हमारी यह बातचीत आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण दे सकी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका DD फ्री डिश।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म कालीचरण से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कविता कृष्णमूर्ति, शान और बेबी स्नेहा के स्वर में फिल्म कोई मिल गया का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार नासिर फराज और संगीतकार राजेश रोशन। और अब सुनिए फिल्म लवर्स का गीत अमित कुमार के स्वर में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन से सजाया आर डी बर्मन ने।

फिल्म खानदानी शफाखाना में तोची रैना को आपने सुना, संगीत रोचक कोहली का था। और अब सुनिए प्रेम रतन धन पायो का गीत अमन त्रिखा और साथी की आवाज़ में, गीत इरशाद कामिल का, संगीत हिमेश रेशम।

0: कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुनिए चर्चा का विषय रात 9:30 पर, सुर्खियों में रात 8:15 पर, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00, लोक संगीत में गायत्री जैन के गाय लोकगीत शाम 6:30 पर, सुगम संगीत में सुनिए राजेश खरे को शाम 6:45 पर, कृषि जगत में गौ पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग और उपचार विषय पर डॉक्टर कविता राय से बातचीत शाम 7:21 पर, शास्त्रीय संगीत रात 10:00 कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और मन भावन रात 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम और अब सुनिए कल की सभा के कार्यक्रमों का। आकाशवाणी दिल्ली से पॉडकास्ट सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी सुबह 9:10 पर, विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30 पर, नाटक हंसना मना है के भाग 12 सुनिए सुबह 9:40 पर, जिले की चिट्ठी सुबह 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 11:00 से होगा। महिला सभा दिन में 1:00, यह हमारे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:30 पर और सुर्खियों में रात 8:00। वंदना सुबह 6:05 पर, चिंतन सुबह 6:30 पर, आलेख डॉक्टर एचपी स्थापक का और वाचक स्वर माधवी जेंडे का होगा। श्री रामचरित मानस गान का 245वां भाग सुबह 6:35 पर, कृषि सामिकी में सुनिए अरहर फसल के रोग शाम 6:45 पर, गुड मॉर्निंग जबलपुर सुबह 7:20 पर, लोक रसधार में मिठाई लाल चक्रवर्ती को सुनिए दिन में 9:00, वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सुबह 10:05 पर, सारंगा सुबह 10:20 पर और एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00, लोक संगीत में सुनिए देवी सिंह दाहिया के गाय लोकगीत शाम 6:30 पर, सुगम संगीत में नंद कुमार जैन को सुनिए शाम 6:45 पर और धारावाहिक नाटक रात 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।
1: नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए पत्र सूचना कार्यालय PIB में एक तथ्य जाँच इकाई स्थापित की है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की श्रृंखला में भोपाल में कल विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ये यात्रा सुबह 11:00 बोट क्लब बड़े तालाब से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज तड़के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। करीब 2:30 मंदिर के कपाट खोले गए और विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज सितंबर में दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों ही मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इंदौर उज्जैन संभाग के रतलाम झाबुआ धार बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:00 हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT

0: फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है,

लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह

0: तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम

0: लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
1: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
2: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गए।
0: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
1: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
2: कैसे चित्र?
1: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
0: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
1: क्यों नहीं, अभी चलिए।
0: चलिए
1: आइए।
0: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
2: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
0: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
2: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
0: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
1: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
0: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
1: हाँ।
0: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
2: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए गायत्री जैन के गाए कुछ लोकगीत। पहले सुनिए लोक भजन।

इसके साथ ही आज का लोक संगीत अब संपन्न होता है। इसमें अभी आप सुन रहे थे गायत्री जैन के गाए कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। सुगम संगीत में आज सुनिए राजेश खरे को। पहले सुनते हैं सूरदास रचित

अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे, कलाकार राजेश खरे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 7 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को

0: विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आज श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारिशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation, Muralidhar Mohol, moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Parliament has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. replying to a debate.

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह नीट मामले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। वहीं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित भी किया।
1: कि हमारे यहाँ 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए, उसी समय सारे प्लांट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्यप्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हरेक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलीन एस लाल भाई और वाइस चेयरमैन पुनीत लाल भाई से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि अरविंद ग्रुप मध्य प्रदेश के देवास, पीएम मित्र पार्क और बेटमा में अपनी इकाइयां स्थापित करेगा। पीएम मित्र पार्क में एक साल के भीतर उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से होगी। इस बार जिला, विकासखंड, नगर और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत भी वंदे मातरम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रगान और परेड की सलामी होगी। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। कार्यक्रम में पदक अलंकरण और परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भोपाल के बड़े तालाब में कल नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुबह 11 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से ज्यादा नावों पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री विश्वास सारंग आज बोट क्लब पहुंचे और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, नावों के संचालन, गोताखोरों और SDRF की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध के साथ या उसकी जगह वनस्पति वसा, स्टार्च और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से भोपाल के श्यामला हिल स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में कल से 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आधारित होगी। इसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भोपाल की महापौर मालती राय करेंगी। प्रदर्शनी में देशभक्ति और विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरों और जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। केंद्र सरकार ने देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत 3 अगस्त को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। ये अभियान एक साल तक चलेगा। अभियान के तहत शहरों के साथ गांवों और कस्बों में भी लोगों को अंगदान के लिए जागरूक

जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ ई प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। एक पेड़ प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने उस सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत विद्यार्थियों को पौधारोपण के साथ जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग में कमी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। लगाए गए पौधों की जानकारी मेरी लाइफ पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्व हाथी दिवस पर भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय परिसर में हाथियों के संरक्षण और इतिहास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश दुनिया के प्राचीनतम हाथी क्षेत्रों में से एक रहा है। पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास ने कहा कि हाथियों का प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य में प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है। कार्यक्रम में गजलोक वाइल्ड सेक्रेड इटर्नल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन भी किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बड़वानी में टोरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं शहडोल में नदी पर पुल नहीं होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। नीमच जिले में पंख अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार में एड्स रोग के प्रति जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकालकर अभियान का शुभारंभ किया गया। और राजगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभागवार समीक्षा बैठक कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

कार्यक्रम सुन्न बारे सबै किसान भैया भोजीहरूको तुलसा भिन्ना कि राम राम। भैयाहरू भोजीहरू रेडियो के लगा तो बैठ गए हो और सबरो काम धाम भी अपनो चलत रहत है। कित तो अच्छो साधन है ना, जो आज को साधन नहीं है जो तो पुरानो है। और कहत नहीं है पुरानी चीज़ कभू पुरानी नहीं होत, हमेशा नई रहत है। और हमारे भैया हरे हैं भोजी हरे हैं बड़े उम्दा, मनो ये सुनत है कि हमारो भी मन बड़ो चंगा हो जात है कि हम कितनी जल्दी चले जाइए अपने चौपाल में। हम तो दौड़ दौड़त आए, आज हमारी भोजी है ना बे हमसे नाराज़ हो गई, आप के हो काए बिना का हो गओ। अब बात तो ऐसी है कि अब उनने अपने ते रुद्राभिषेक करो है तो अब हमने कही कि हमें तो चौपाले जाने हैं तना जल्दी कर ले। अब करत करत करत करत करत करत उनने तैयारी ना करी, हमें आने हतो। हमने कही भौजी हम तो जा रहे हैं, तुम अपनी करत रहो। सो उनने कही आ हाँ आज ना जा। हमने कहा काहे ना जाइए, अपने भैया भौजी हरन से हमें मिलने हैं, हम बोल बत का होत रहे थे। और ऐसा थोड़ी होते कि तुमने कह दई हो हम तुम जल्दी काहे नहीं करी। सो उन्हें कही बिना देखो बुनसरा से उठने पड़त है और हमें मंदिर भी जाने पड़त है, शंकर जी को अभिषेक चल रहो है। सो पूरो सावन हमने अभिषेक को संकल्प लाओ। हमने कही जे बात तो है भौजी, सुई में गुस्सा ना हो, हम लौट के आ हैं। सो हमारे लाने पंजीरी, अब शंकर जी के बे चढ़ती है ना रोट, सो बे धर राखियो हम आ हैं सो जरूर ले हैं। तो उनने कही आहा बिन्ना जे तुम्हारे लगा हरी चुड़िया मेहंदी और तुम्हारे लगा 16 सिंगार हमने धर राखो है। हमने कही बिल्कुल धर राखियो हम आ हैं सो ले ले हैं। तब लो हम आ गए चौपाल और अपनी भोजी बिन्ना हरन से बोल बतकाओ करवे। और बोल बतकाओ देखो ऐसो चल रहो है कि का बताइए, सावन तो आ गओ, जिते देखो उते सावन की बहार, सावन की हरियारी हरियारी मची है। और अपने रविशंकर श्रीवास्तव भैया भी कछु ऐसे ही कह रहे हैं।

0: हाँ तो भैया, हम तो झूमत झामत ऐसे बैठे चौपाल में की का बताइए, बड़ो उम्दा लगो। और लोक भजन तो है ही ऐसे कि जितने सुन ले उतने अच्छे, और जितने अपने लोकगीत बने हैं वे सबके मन के भाते ही हैं, और अपने उल्लास में उत्साह में जे गान तान और रंग भर देते हैं। कहत नैया कि जब मौसम कछु अच्छो होत है सो मन भी उम्दा हो जात है, और हरियाली प्रकृति जे वातावरण देख के तो कहने ही का, चार चांद तो लगते ही हैं। अब हम तो आ गए आज, अब भौजी हमारा इंतजार भी कर रही हैं, और बीच में हमें भौजी ने फोन भी कर लो। हमने कही काय भौजी, का होगा हो, तुम्हें चैन नैया का? उन्हें कही आ हाँ बिन्ना, आज देखो अपनी जोन जोन बछिया है ना, कछु खात पियत नहीं है। हमने कही काय का होगा हो? कहें कि हमने ऊखे दो खावे के लाने सा, उखो मुँह तो कछु अच्छो नहीं लगत, तो सोने कछु खाओ नहीं है। अब हमें भी चिंता हो आई थी, सो हम बेर बेर हम भौजी को फोन लगाए। हमने कही काय भौजी, कैसी है अपनी? उखो नाम हमने रम्मू रखो है, सो हमने पूछो रम्मू कैसी है, तो कहीं यहाँ कछु अच्छू सो नहीं है। सो हमने कही भौजी टेम टेम पे टीका लगवा लो, तो बोली हाँ हमने तो लगवा लो। हमने कही टेम टेम पे दिखात भी हो तो? बोली हाँ दिखात तो है, और अबे बस्कारा को टेम तो चल रहा है। सो हमने कही मुख को देखभाल तो देखभाल अपन करते ही हैं, का होगा? सो अब देखो चिंता तो बनी रहते, कहे से कि ढोर बछोरू आए बे कछु बते हैं तो ना, बे अपने के पतो लगाने पड़े हैं, और पतो तब लगे है जब हम उहे अस्पताल ले जे हैं, और अस्पताल ले जे हैं तब हमें उके बारे में पतो लगे है। सो भैया अपने ते जितने भी मवेशी हैं, हम तो कह रहे हैं कि अपने भैया आ रहे हैं टेम टेम पे, उन्हें भी दिखात रहें और सुनात रहें कि बे उन्हें कछु बीमारी जारी तो नहीं लगी है। अब ऐसे ही बीमारी की बात आ गई तो देखो भैया, हमारे इतने कोनो न कोनो विशेषज्ञ भैया बिन्ना भौजी हरे जिज्जी हरे आत हैं, सो हमारे अच्छो बतकाव कर लेते हैं, जिसे ई बतकाव की जानकारी आप औरन तक मिल जात है। कछु भी अगर उमें आप लोग औरन को लाभ हो रहा है, सो हमारा जो भी उद्देश्य रहते हैं कि आप उसे लाभ लो, और कछु जानकारी हमारे बतावे से आप आसानी से अगर कर रहे हो सो बहुत ही उम्दा बात है। और आपकी चिट्ठिया पतिया के माध्यम से जब आते तो रहती हैं कि हमने आपकी जा बताई जानकारी सुनी और हमें उसे लाभ मिलो। सो भैया आज जानकारी जा है कि गौ पशुओं में सुरपका मुरपका रोग और उपचार, और अपनी कविता राय जी जी बैठी हैं और इनसे अपने बतकाव कर रहे हैं विपिन यादव भैया, सुसुनियत है।
1: हमारे पंच भाइयों जो कि पशु पालते हैं, खासकर गौवंशी पशु, उनमें मुंह पका खुरपका रोग से एक अजीब प्रकार का भय रहता है, और इस भय को दूर करने के लिए आज हम बातचीत करेंगे इस रोग पर, मुंह पका और खुरपका रोग, इसके उपचार से संबंधित बातें करेंगे। और हमारे बीच में इस विषय पर जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर कविता रॉय जी। कविता जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: अब ये एक भयावह रोग है जब मुंह पका खुरपका गौवंशी पशुओं में, तो इस पर हमें हम चाहेंगे कि

0: अच्छे तो आप जानकारी
1: हाँ
0: दें ताकि जागरूकता इसके प्रति आए लोगों को।
1: जी हाँ, ये मुंहपका खुरपका एक खतरनाक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि एक विशेष प्रकार के वायरस या विषाणु के कारण उत्पन्न होता है।
0: जी
1: इस रोग की भयानकता इससे सिद्ध होता है कि ये एक छोटे समय में बहुत सारे पशुओं को अपने गिरफ्त में ले लेता है।
0: जी
1: इसमें ये खुर वाले जो पशु होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ बकरी और जंगली जानवर जैसे नील गाय, ये हिरण जो हैं
0: जी
1: और जंगली सुअर, इनको ये अटैक करता है। और ये वायरस जो है मुंह में और खुर में ज़्यादा पाया जाता है, और जो कम उम्र के पशु होते हैं उसमें ये घातक रोग है, उनकी मृत्यु दर अधिक होती है।
0: जी हाँ कविता जी, इस रोग के लक्षण क्या है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं?
1: जैसा कि मैंने कहा है, ये एक विषाणु जनित रोग है और बहुत जल्दी फैलता है। ये दूषित हवा, पानी, चारा और मनुष्य के हाथों द्वारा ये रोग एक दूसरे जानवर में फैलता है।
0: जी
1: इसके लिए प्रबंधन, स्वच्छता बहुत जरूरी है।
0: जी
1: मुंह के अंदर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो कि एक साथ मिल के बहुत बड़े हो जाते हैं और फूट जाते हैं। फिर उसमें लार टपकने लगती है और जो लार होता है इसमें विषाणु पाए जाते हैं
0: जी
1: और ये एक दूसरे में फैलते हैं। मुंह में छाले के कारण ये जो जानवर हैं उनमें बहुत पीड़ा होती है,
0: जी
1: खाने में असमर्थ हो जाते हैं, कमजोरी आती है और बहुत तेज बुखार आता है, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट।
0: जी
1: और गायों के थनों में और अयन में विकृतियां पाई जाती हैं। और उसके बाद पैरों के बीच में जो चमड़ी होती है उसमें भी छाले आ जाते हैं। और इसमें अल्पवयस्क पशु जो होते हैं उसकी मृत्यु दर अधिक होती है। वयस्क में थोड़ा कम होता है, लेकिन ये रोग के वाहक होते हैं। ठीक होने के बाद भी ये जानवर दूसरों को रोग फैलाते हैं। पैरों में जो लक्षण है, छाले के कारण अगर उसमें मक्खी बैठ जाती है
0: जी
1: तो और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है। कीड़े, मक्खियाँ जो हैं अंडे देती हैं, वो लार्वा बनते हैं, खुर गिर जाता है, फिर नए खुर आने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं।
0: जी
1: कई जानवरों में आँखों में धुंधलापन आ जाता है
0: जी
1: और देखने में उनमें कष्ट होता है, और गर्भावस्था में कई बार गर्भपात हो जाता है।
0: जी
1: यह बीमारी देशी नस्ल के जानवर में कम पाया जाता है, विदेशी और संकर नस्ल के जो गाय हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी देखी जाती है। बछिया बछड़ों में ये जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उसमें ये वायरस जाके ये मृत्यु तक हो जाती है जानवर की।
0: जी
1: उनके हृदय में एक विशेष प्रकार के भूरे और पीले रंग के धारियां बन जाती हैं, जैसे कि बाघ के छाल जैसे दिखती है ये।
0: जी तो इस बीमारी का उपचार कैसे किया जाता है?
1: जैसे कि ये संक्रामित रोग है, वायरल बीमारी है, तो इसका कोई ऐसा ठोस इलाज तो है नहीं,
0: जी
1: परंतु वैकल्पिक उपाय जरूर हैं जो कि इसको रोग को बढ़ने से इसको रोकता है
0: जी
1: और दूसरे जानवर में फैलने से बचाता है।
0: जी
1: तो इसमें पहले तो जो मुंह के लक्षण जो दिखते हैं छाले, उसको जैसे लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं,
0: जी
1: या फिटकरी या अन्य कोई कीटाणुनाशक दवा से उसका घोल बना के पहले मुंह को अच्छे से धो लें,
0: जी
1: उस पर ग्लिसरीन लगाएं और चारे में उनको बहुत नरम तरल पदार्थ खाने के लिए देना चाहिए
0: जी
1: जिससे मुंह के छाले में ज़्यादा जलन ना हो। उसके बाद जो पैरों में जो छाले हैं उनको अगर उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो पहले तारपीन के तेल से कीड़े को मारें, फिर
0: जी
1: एंटीबायोटिक मलहम लगाएं उस पर। उसके बाद साफ पट्टी उसमें बांध दें जिससे कि उसमें अधिक मक्खी ना बैठे। फिर
0: जी
1: और तेज बुखार की स्थिति में बुखार को कम करने के लिए इंजेक्शन आते हैं उसको लगवाएं, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन तथा शरीर में ताकत भूख बढ़ाने की इंजेक्शन उसको लगवाएं। और ये सब इलाज किसी योग्य पशु चिकित्सक के संरक्षण में ही होना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है तो मनुष्य को भी या डॉक्टर को भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए।
0: ये और भी भयंकर बात है कि ये संक्रमित होता है और
1: हाँ
0: संक्रमण से ये मनुष्यों में भी आ सकता है।
1: हाँ
0: इसकी सावधानी या इसकी रोकथाम के उपाय हम क्या कर सकते हैं?
1: इसके लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये टीका जैविक उत्पाद संस्थान महू में टीका बनता है, एवं सरकार की ओर से ये रियायती दरों पर ये
0: जी
1: उपलब्ध है टीका। तो पशु चिकित्सालयों में ये जो किसान भाई हैं अपने जानवर को वहाँ ले जाकर टीका लगवा सकते हैं।
0: जी
1: और भी कई प्राइवेट कंपनियां हैं
0: जी
1: जो कि ये टीका बनाते हैं। ये बीमारी एक खतरनाक महामारी हो सकता है, इसके रोकथाम के लिए

0: दर्शन की ओर से कुछ नियम बने हुए हैं।
1: जी
0: ऐसे स्थान या गांव जहां पर यह बीमारी का प्रकोप पहले देखा गया है, वहां विशेषकर यह ध्यान देना चाहिए कि वहां से पशु बाहर या दूसरे गांव या शहर में ना बेचा जाए।
1: जी
0: टीका रहित पशु एवं टीकाकरण के लिए टीका युक्त पशु को एक साथ ना रखें।
1: जी
0: जो जिसमें टीका लग गया है उन पशुओं को चिन्हित किया जावे। रोगी पशुओं को अलग बांध कर रखना चाहिए तथा उनको नदी या तालाब या झरने का पानी पीने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि वो पानी को दूषित करता है।
1: जी
0: आसपास के लगे हुए गांव या जहां स्वस्थ जानवर हैं उसमें तुरंत टीकाकरण करवाना चाहिए। पशुपालकों को अपने हाथ पैर अच्छे से साफ सफाई रखना चाहिए। जहां पशु बांधते हैं वहां गौशालाओं को सफाई रखना चाहिए। बछड़ों को रोगग्रस्त माँ का दूध ना देवे,
1: जी
0: उससे क्या होता है बछड़ों में भी बीमारी फैलती है। जहां भी ये बीमारी का लक्षण देखा गया हो, सूचना जो है निकटतम पशु केंद्र बने हुए हैं वहां तुरंत उसकी खबर देना चाहिए,
1: जी
0: जिससे कि ये बीमारी और आगे ना फैले और टीकाकरण उचित समय पर किया जावे। मनुष्य और पालतू जानवर या जंगली जानवर ये सभी रोग के जीवाणु के वाहक हैं, अतः साफ सफाई एवं संक्रमण फैलने के लिए यह रोकने के लिए सभी इंतजाम करने चाहिए।
1: जी
0: खुरपका मुंहपका एक लाइलाज बीमारी है। अभी तक इस रोग का कोई ठोस उपाय नहीं है, टीकाकरण एकमात्र इसका इलाज है।
1: टीकाकरण की बात आपने की है, मुंहपका और खुरपका रोग का जो टीका लगता है
0: हाँ
1: इसकी अवधि यानी कि इसका असर कितने दिन तक रहता है और इस टीके को कितने दिन बाद दोहराया जा सकता
0: ये
1: है?
0: 6 महीने तक उसका असर रहता है। साल में 2 बार लगता है, एक बार ये मार्च में और एक बार अक्टूबर में
1: मतलब
0: टीका लगा,
1: प्रतिवर्ष हर पशु को दो
0: दो
1: बार
0: बार टीका
1: टीका
0: लगवा दो।
1: लगवाया जाए।
0: हाँ
1: तो ये जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों हमारे किसान भाइयों तक पहुंची है। आशा है कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आप सभी का योगदान हमारे साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो भैया अपन ने उम्दा जानकारी पाई और हमें उम्मीद है कि हमारी जानकारी आप और उनके काम जरूर आए हैं। अपने इतने मवेशी पशु हैं तो उनकी देखभाल जरूर आप और करो। अबे बस करा को टाइम चल रहा है सो अपन के मुद को ध्यान धर रखने हैं। और भैया देखो अपनी काकी हती सो उनको मोड़ा है, आज बड्डो नाम कर रहो है। कहते कि गांव में रहते है शहर में काय भेज दो। अब शहर गांव में पहले इतनी सुविधा तो ना होती, अब देखो वे आत है सो अपने गांव के लोगन को भी जागरूक करत है। कैसे कि उखे जानकारी बड़ी अच्छी है और अपने इते युवा जोन भैया हैं वे उसे जानकारी लेत रहते हैं। और कोनो भी जानकारी आजकल सब मोबाइल में आत है और मोबाइल में सबरी जानकारी तो आते ही है, पे सबको आत है सबको समझात है, तो बड़ा उम्दा लगत है। और भैया आज ऐसे ही बात करिए सो आज है युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सब मना रहे हैं और अपनो देश भी युवाओं को देश आए। भारत की मुद की आबादी जिमें युवा ज़्यादा हैं और इको अर्थ भी जाई है कि हमारे देश में मुद के ऊर्जावान युवा प्रतिभावान युवा तो है ही हैं और संभावनाएं भी मुद की हैं। आज के युवा शिक्षा विज्ञान तकनीक खेल कला व्यापार प्रशासन कृषि और मुद के कार्य में लगे हैं, सबरे अपने नाम भी रोशन कर रहे हैं। और युवा आज के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं और रोजगार से भी जुड़ रहे हैं। अब देश आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने देश को आत्मनिर्भर बनावे में अपने युवाओं को योगदान मुद को है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे हम भी जाए संकल्प लें कि अपने सपनों को अपन के पूरा करने हैं, संगे संगे अपने परिवार समाज और देश के विकास में अपना योगदान जरूर दें। मेहनत ईमानदारी अनुशासन और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को हिस्सा जरूर बनाए और अपने इतने जोन भी युवा हैं उन्हें अगर कछु कमजोरी है सो उनकी अपन मदद करें। देश को विकास हमारी भी जिम्मेदारी बनत है, हम छोटी छोटी चीज को लेकर जागरूक जरूर रहें। स्वच्छता परिवार पर्यावरण जरूरतमंद की सहायता जरूर करें और अपने अधिकारों के प्रति अपन को सतर्क रहने हैं, अपने कर्तव्यों को उम्दा से अपन को निभावने हैं, तभी जाके एक सशक्त भारत बने है। एक अच्छो देश में अपन निवास तो कर ही रहे हैं, समझ लो कि अपने जो युवा हैं उत्साहित हैं और हमें उनको उत्साह भी बढ़ाने हैं। और आज हम ऐसे ही बात

कर रहे हैं अपने युवा भैया की। और देखो अपने जोन भैया हैं, वे भी यही चाह रहे हैं कि हमारा नाम रोशन हो, हम आगे बढ़ें। और ऐसे ही में अपने रुद्रदत्त भैया भी कछु कह रहे हैं, सुनो।

हाँ तो भैया, अपन ने युवा दिवस की बात करी और अच्छो उम्दा देशभक्ति गीत सुनो। कैसे कि 2 दिन बाद तो 15 अगस्त है ही है, और कहत नहीं है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। अभी अभियान जो चल ही रहो है, सबके घरन में तिरंगा लग गए हैं, और जितने भी अपने मोड़ा हैं मोड़ी हैं तन तन से तिरंगा ले लेके अपने घरे में सबने लगाए हैं, और मोबाइल में सबने अपने डीपी में सोई लगाए हैं। कैसे कि अपनी देश की शान है वह, और अपन अपने देश में रहते हैं सो इसे अच्छी उम्दा बात और काहू है। अपने देश के लाने, अपने मान सम्मान के लाने, अपने तिरंगा की रक्षा के लाने, अपन देशभक्ति से ओत प्रोत जितने भी अपने जोन रहे वीर सपूत उन्हें याद भी कर रहे हैं और करते ही हैं। और आज भैया बात कहूँ भी कर लो कितों भी कर लो, अपने इतने महान महान तो रहे देश में। आज भारत के महान वैज्ञानिक को बतकाओ भी हम कर रहे हैं। आज भारत के महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी उद्योगपति और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी अपन मना रहे हैं, और उन्हें भी हम नमन कर रहे हैं। वे अपने देश में बड़ो उम्दा उनने काम करो। डॉक्टर विक्रम साराभाई केवल वैज्ञानिक नहीं हते, बल्कि इनने शिक्षा और संस्थान नए नए निर्माण भी करे, नए नए क्षेत्र में भी उनको महत्वपूर्ण योगदान रहो। उन्हें भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देवे के लाने मुख्य संस्थानों की स्थापना के अवसर भी मिले, और उनने मुक्त योगदान भी दें, विकास के लाने मुख्य काम भी करे। उनकी सोच व्यापक हती। वे मानते कि कोनो भी देश को विकास केवल उद्योग और आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि शिक्षा विज्ञान तकनीकी और मानव संसाधन जो उन भी हैं उनके विकास में भी सहायक है। और भैया यही कारण है कि उनने युवाओं को प्रेरणा स्रोत भी मानो जात है, और वैज्ञानिकों को नए नए विचारों के संगे संगे बढ़ भी की उनने प्रेरणा भी दी। और भैया हरो, भारत सरकार ने उन्हें 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित करो हतो, और जाई नहीं उनके मरवे के बाद भी 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित करो गो। तो भैया है ना कितनी उम्दा बात कि अपने देश में ऐसे महान महान वैज्ञानिक हते जिनको आज हम याद कर रहे हैं। और भैया याद काहे ना करिए, कैसे कि अपने देश में

यही अच्छी बात है कि हम उनकी जोन भी कहानी है वे हमारे लाने प्रेरणा स्रोत होती हैं, और उनकी कहानी से हम नहीं हमारे देश भी आज प्रेरणा स्रोत हैं और नए नए काम भी कर रहे हैं। अपने युवा भैया हैं बेसोई, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, सो नए नए काम भी कर रहे हैं। और भैया जे तो हो गई विक्रम साराभाई जयंती की बात, और उन्हें हम दिल से नमन कर रहे हैं और उनके जितने भी काम हैं उन्हें याद कर रहे हैं। और अपने भैया हैं भौजी हैं उनसे भी हम जय कह रहे हैं कि जितने भी अपने इतने किताबें हैं उन्हें ऐसे नहीं छाड़ने हैं, अगर टेम मिले सो उन्हें पढ़ो ज़रूर, उन्हें अपने जीवन में उतारो ज़रूर, कैसे कि कब हम पढ़ के अपने मोड़ा मोड़ियन को बे शिक्षा दे, ये अच्छी बात होता है। भैया भौजी जी जी हरो बिन्ना हरो, अभी देखो अपनी भौजी हरे कहूँ तो दिया लेस रही हैं, कोनो मंदिर में हैं, कोनो अभिषेक भी कर रही हैं, कैसे कि आज हम आते ना सो भौजी कहते तो अभिषेक हो ही रहो, तो हमारे बगल में भी मुतकी जिज्जी भोजी हरे मिल के सब ने 5 दिन को रुद्राभिषेक को संकल्प लाओ और सब मिल के रुद्राभिषेक कर रही हैं रोज़। बड़ो अच्छो लगत है जिते देखो उते भोजी हरे हरी हरी दुतिया पहन के निकल रही हैं, हरी चूड़ी पहन के, बड़ो अच्छो लगत है। घरन घरन शंकर जी पूज रहे हैं भजन कीर्तन, और भुनसरा से जिज्जी भोजी हरे सब काम निपटा के शंकर जी बनावती हैं, उके बाद उनको अभिषेक तो कर ही रही हैं। और जिज्जी भौजी बिन्ना हरे भी अपने घर के संगे संगे अपने जो हैं भैया हरे हैं उनके संगे खेती किसानी में भी हाथ बटाव रही हैं। और बस कारों को टेम चल रहा है, सावन भी झूम के है रिमझिम पुहार, सावन की उमदा बहार तो है ही है, जिते देखो उते जिज्जी भौजी हरे हरी चुड़िया हरी साड़ी पहने दिख रही हैं। बड़ो उम्दा लगा था भैया, 16 सिंगार हरियारी हरियारी चारों तरफ ही है और सब मेल जोल के बड़ो उम्दा सावन मना रही हैं। शंकर जी तो घरन घरन पूज ही रहे हैं, बस्ती बस्ती अगल बगल मंदिर जिते देखो उते, बड़ो अच्छो लग रहा है। और देखो अपने इते सारिका नायक जी जी हैं बेका कह रही हैं।

हाँ तो भैया, अब हो रही है चलबे की बिरिया। कल फिर हुए आपुरन से मुलाकात। तब तक खिलाने तुलसा बिन्ना की राम राम। जय जवान जय किसान।

0: अभी आप कृषि जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सके।

लगेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईए डीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईए डीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे।
सदन में

सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और FCRA विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि

संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: Surgió Me.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो हैं हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो गई थी। उसके दो रीजन हैं, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए, तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
3: जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं।
2: जी, जी।
3: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की, एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की, तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पर एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी और जी, इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिए।
2: यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपने आवश्यकताओं के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहाँ पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी, तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी?
3: यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके। तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है, जहां से रिकवर किया जा रहा है
2: जी,
3: उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिल रही हैं
2: जी, जी, जी।
3: लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
2: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप

0: से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
1: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर,
0: जी
1: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा, और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने। इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर है वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए,
0: जी जी,
1: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
0: यहाँ पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहें कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
1: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक जब तक कि ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को।
0: अच्छा।
1: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है ये हमें दीजिए, तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
0: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
1: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा, और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा, स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
0: अलग हो जाएगा। यहाँ यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
1: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत है लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
0: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहाँ पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
1: अब तो सेंटर के अंडर आ गया तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है।
0: जी जी,
1: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
0: जी,
1: तो एनवायरमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो, लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन है तो स्टेट में,
0: बिल्कुल,
1: और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक की माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
0: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
1: जी बिल्कुल, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है, माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो

0: अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है
1: जी,
0: और स्टेट को रेवेन्यू आपने अगर देखा होगा लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन, और जितने भी लाइसेंसेस हैं बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें
1: अप्लाई
0: करेगी उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
1: बिल्कुल,
0: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है,
1: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
0: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है प्राइमरीली दो चीजों के लिए कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे
1: जी।
0: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स।
1: हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है, और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
1: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म सीता और गीता से है, जिसे गाया है मन्ना डे और आशा भोसले ने, संगीत RD बर्मन का।

इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत, श्रेया घोषाल की आवाज़, फिल्म जब वी मेट का गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत। गीतकार समीर, संगीतकार अनु मलिक।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya
2: style number? इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे

0: पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास

0: के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर

गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं।

0: 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on 3rd day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: नमस्कार।
2: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी दो दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
3: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में।

0: में उनसे भी निपटारा करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं और जैसे आपने कहा 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा MSME बिल पारित हुआ है।
1: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्य प्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
0: देखिए, MSME क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं चूँकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है। चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एक ODR पोर्टल है हमारा जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी, और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ये साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहाँ पर अपनी इन्वॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूँगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इस नए संशोधन

0: उधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे एमएसएमई को मिलेगा, चूंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। सीपीएससी को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन एमएसएमई से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहाँ तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे, शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया, इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि

0: कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया, इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
0: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
1: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
0: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
1: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, उसको अब सरल कर दिया गया है। उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है, तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
0: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
1: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो एमएससीएफसीज हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर

0: में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, और कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं। और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमईज जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज़्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, टीयर टू और टीयर थ्री वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है, और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ की उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं, और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी

0: पॉलिसी बनाई गई है, इस बिल में उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैंकिंग मिली बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया। और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में। और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
0: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफ़ी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं वहाँ पर किसी को सेलेक्ट करता है, या वहाँ कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
1: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं। और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं। और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
0: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
1: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
0: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी, 30% से थोड़ी ज़्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
1: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुँचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
1: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने

बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार

0: और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत में आज सुनिए बांसुरी वादन। कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आज इनसे सुनिए बांसुरी पर राग मियां की मल्हार। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप बांसुरी पर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से राग मियां की मल्हार सुन रहे थे। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

आदमी और इंसान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में, शब्द साहिर लुधियानवी के और संगीत रवि का। और अब सुनिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी में, आशा भोसले और किशोर कुमार को। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन। श्रोताओं, आदमी और इंसान फिल्म के गीत के लिए हमें पत्र लिखा ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू ने। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना, मयंक और तन्वी गौहर, जयपाल यादव ने। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू ने। और चलती का नाम गाड़ी फिल्म के लिए हमें फरमाइश भेजी प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। लीजिए आपकी पसंद का गीत।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

बरसात की रात, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शब्दकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन। सुनने के इच्छुक नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे। बाजार पारा बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा। और अब सुनिए फिल्म दुनिया का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। सुनने के ख्वाहिशमंद चौहल द बागपत से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। मगर लोग छत्तीसगढ़ से पुनूराम साहू, राज तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू।

इस गीत के साथ ही आज का मन भावन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।